हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी इस सभा में।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 MHz पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सबसे पहले समूह स्वर में मातृवंदना, रचना है डॉक्टर ललित मोहन की।

समूह स्वर में मातृवंदना आप सुन रहे थे। रचना थी डॉक्टर ललित मोहन की। आइए अब सुनते हैं रविंद्र रावल की ये गणेश वंदना अनुप जलोटा और साथियों के स्वर में।

हरिओम शरण और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना आपने सुनी। इसके साथ ही कार्यक्रम अर्चना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे बस कुछ ही पलों में यानी 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा सुरेश वाडकर का। 6:40 पर लेकर आएंगे फूल बिस्तर गीत कार्यक्रम। 7 हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे। कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत होता है 7:05 से। आपके फरमाइश के कुछ फिल्मी गीत लेकर आएंगे। कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत, समय सुबह 7:20। संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें आपको सुनवाएंगे 7:45 से। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत सुनेगा 8:15 पर और 8:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल की और 9:10 से हम रिले करेंगे प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम होगा पर्यावरण प्रेमी आशीष अग्रवाल पर केंद्रित और कार्यक्रम हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। समय पुनः सुन लीजिए सुबह 9:10। 9:40 से हम रिले करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 10:05 पर स्टूडियो लौटेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत और ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 10:30 से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम 11 से हम पुनः रिले करेंगे।

दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत और शाम 5:02 पर होगा युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले करेंगे। शाम 5:30 पर स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। 6 बजे विविध भारती सेवा के

0: कार्यक्रम मुंबई केंद्र से और सदाबहार गीत स्टूडियो से आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। लोकरंग कार्यक्रम का समय होगा 6:45 और हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी लेकर आएंगे शाम 7:20 से। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:00 और संगीत सरिता कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 8:20 से। आपकी फरमाइश पूरी करेंगे रात्रि 9:00 कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत और 9:30 से रिले किए जाएंगे विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। आज दिन भर की सभा में समाचारों का अनुप्रसारण इस प्रकार होगा। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, इन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं सुबह और शाम 7:10 से और दोपहर 2:10 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होता है।
1: मैं सागर हूँ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और 5वें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से। सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
0: कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर सुरेश वाडकर का।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आँखें मोर पंख पर बनी आँख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धा नथ हो पति के वचन सुनने लगीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था सुरेश वाडेकर का। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गुलशन बावरा का लिखा हुआ गीत मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वर में। मॉडर्न गर्ल फिल्म से ये गीत हमने लिया है, इसे स्वरबद्ध किया रवि ने।

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें
1: जंगल से।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी सागर से। दिल ही तो है इस फिल्म में, आइए अब आपको सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की स्वर में ये गीत। शब्दकार हैं साहिर लुधियानवी और इस गीत को संगीत से सवारा रोशन ने।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत। SG वर्मन ने संगीत से सवारा है और फिल्म का नाम नौजवान।
4: बर्मन दादा हमेशा वहाँ का फोक का उस टाइम से वो खुद गाते थे, और वो खुद जब गा के बताते थे तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती थी कि अब दादा की तरह कैसे गाएं, तो उनकी आवाज़ ज़रा सी टूटती थी तो वो मैं नहीं कर सकती थी। पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये कैसे गाऊं, तो वो बताते थे कि तुम ये इस तरह गाओ तो अच्छा लगेगा। और जब उनको अच्छा लगता था तो बहुत आके मेरे पीठ पे हाथ रख के कहते थे कि बहुत खुश रहो लता। और उनका खास मतलब जब वो बहुत अप्रिशिएट करते थे तो उनकी खास बात थी पान खिलाते थे।

गेटवे ऑफ इंडिया अगला गीत इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के स्वर हैं, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना और संगीत से सवार इस गीत को मदन मोहन ने।

गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी के स्वर थे, राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना थी और इस गीत को संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है, 6:55 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही पलों में।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7 बजे हैं। सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता, स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। कभी मैं अपने हाथ की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। श्रोता, डॉक्टर बशीर बद्र साहब की इन पंक्तियों से जाहिर है हम में से कई लोग हमेशा अपनी सफलता और असफलता का कारण किस्मत को बताते हैं। किस्मत में लिखा था तो असफल हो गए, या किस्मत ही कुछ ऐसी थी कुछ नहीं कर पाए, वगैरह वगैरह। लेकिन श्रोताओं, हमारे हिसाब से कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और कर्म के बाद हमारे अंदर उपजा शर्तहीन संतोष। जी हाँ श्रोताओं, अच्छे कार्य करते जाइए, फिर आपके कार्यस्थल में तो प्रगति होगी ही, लोग भी आपको भरपूर सम्मान और प्रेम देते हैं। श्रोताओं, हमने बात की शर्तहीन संतुष्टि की, तो सच्ची संतुष्टि तब आती है जब सब कुछ मन मुताबिक हो जाए। सच्ची संतुष्टि तब नहीं आती जब सब मन मुताबिक हो जाए, बल्कि तब आती है श्रोताओं जब मन मुताबिक होने की शर्त ही समाप्त हो जाए। शुरुआत में मन हमेशा तुलना करता है, जो मिला है उससे बेहतर भी मिल सकता था। इसी तुलना में कभी कभी असंतोष जन्म लेता है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव सिखाता है हर संभावना के पीछे हमेशा पूर्णता नहीं होती। हो सकता है आप जहां हैं वहीं आपको उच्च पद सम्मान और प्रेम मिले, कि कहीं और जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। श्रोताओं, ये जीवन की विडंबना ही है कि जो सफल नहीं हो पाए वो अपनी काबिलियत साबित करने में लगे हैं, और जिन्हें सफलता मिल गई है वो नौकरी की उलझनों में फंसे हुए हैं। हकीकत ये है श्रोताओं कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होते, बस उसका स्वरूप बदलता जाता है। सबके अपने अपने संघर्ष हैं और सबके अपने अपने सच। लोग कहते हैं जब यह मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा, इसका मतलब हमारी खुशी एक शर्त पर टिकी होती है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं अभी भी शांत और संतुष्ट हूँ और बढ़ने का प्रयास करूंगा या करूंगी, तब हम शर्तहीन संतुष्टि का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, यहाँ शर्तहीन संतुष्टि से हमारा मतलब यह नहीं है कि हम कोई लक्ष्य ही ना बनाएं अपने जीवन में, बल्कि इसका अर्थ है कि हम लक्ष्य की ओर पूरी लगन से बढ़ें, लेकिन अपनी खुशी और आत्मसम्मान को परिणाम से ना बांधें। यानी श्रोताओं, शर्तहीन संतुष्टि वह है जो किसी व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु या उपलब्धि पर निर्भर ना हो, यह भीतर से उत्पन्न होने वाली वह स्थिति हो जिसमें मन वर्तमान को स्वीकार करता हो। यानी यदि आप वर्तमान से खुश हैं, प्रसन्न हैं और अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए कृतज्ञ हैं, तब आप एक सफल और संतुष्ट इंसान हैं। और श्रोताओ, कार्यक्रम के अंत में हम यही कहेंगे और इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ अनुमति चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह, ये आकाशवाणी सागर है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषि चर्चा पर आधारित कार्यक्रम कृषि संकेत।
1: मैं सागर हूँ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहाँ हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 से।
0: आकाशवाणी सागर का प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। कृषि संकेत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं मॉनसून पूर्व टीकाकरण से उन्नत पशुपालन। इस विषय पर जानकारी देंगे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश शाह।
3: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बारिश के दौरान पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। इनके बचाव के लिए यदि हम समय से इनके टीका लगवा लेंगे तो फिर इन बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो जो बारिश के पूर्व लगने वाले टीके हैं उनमें से मुख्य है, एक घटरूंदा बीमारी होती है, इंग्लिश में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या HS बीमारी होती है, और ये बीमारी जानलेवा होती है। तो इसके बचाव के लिए इसका टीकाकरण बारिश के पूर्व लगना होता है, 6 माह से ऊपर के उनमें ये टीका लगवाना चाहिए। इसके साथ ही एक ब्लैक क्वार्टर बीमारी होती है, जिसको हम चुरका भी बोलते हैं, एक टंगिया बोलते हैं, जिसमें पशु लंगड़ा के चलता है, इसमें भी पशु की मृत्यु हो सकती है। एक टीका ब्लैक क्वार्टर का होता है, जो कि हमें बारिश के पूर्व मतलब 15 जून के आसपास लगवा लेना चाहिए, और जुलाई के पहले हफ्ते भी ये टीका लगवा लें। घटरूंदा का टीका और एक टंगिया का टीका अलग अलग भी लगवा सकते हैं, और ये संयुक्त रूप से भी आते हैं। संयुक्त रूप से लगवाना चाहें तो एक बार में ही दोनों टीके लग जाएंगे। एक बीमारी होती है खुरी की, जिसको हम FMD बोलते हैं, तो इसका टीका वैसे तो सर्दी के पूर्व लगता है, उसका टीका भी HS और BQ के साथ संयुक्त रूप से आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि तीनों बीमारियों का टीका एक साथ लग जाए, तो आप HS, BQ, FMD का टीका बारिश के पूर्व संयुक्त रूप से लगवा सकते हैं, जिससे आपको ये फायदा होगा कि बार बार टीका लगवाने की समस्या नहीं होगी, जो तीनों बीमारियों से आप अपने पशु को सुरक्षित रख सकते हैं। एक लंपी बीमारी होती है, तो लंपी बीमारी का टीकाकरण भी हमको बारिश के पूर्व करवा लेना चाहिए। यदि इसकी वैक्सीन शासन स्तर पर भी उपलब्ध रहती है तो आप अपने पशु चिकित्सा विभाग से संपर्क कर लंपी स्किन डिजीज़ का भी टीका या LSD का टीका लगवा सकते हैं। बारिश के पूर्व हमें एक और बात का ध्यान रखना रहता है कि हमें पशुओं में कृमिनाशक दवाई आवश्यक रूप से देना चाहिए। तो कृमिनाशक दवाइयां देना चाहिए, इसमें अलग अलग दवाई

0: पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ दें, और कुछ कृमिनाशक दवाइयाँ जैसे कि आइवरमेक्टिन, इसमें हम आंतरिक परजीवी या एंडोपैरासाइट्स को तो आइवरमेक्टिन की सहायता से हम अंतर परजीवी और बाह्य परजीवी का नियंत्रण कर सकते हैं, या आप एल्बेंडाजॉल है, फेनबेंडाजॉल है, या इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी आते हैं, वो दवाइयाँ भी आप दे सकते हैं। जहाँ तक इन वैक्सीन की या टीका द्रव्य की उपलब्धता का सवाल है, तो आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सा संस्था में जाकर संपर्क कर सकते हैं वहाँ के अमले से, और वहाँ पर जो भी वैक्सीन उपलब्ध होती है वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा, और अगर किन्हीं कारण से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है उस समय, तो वहाँ के जो विशेषज्ञ हैं वो वैक्सीन आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसके साथ में विभाग में एक 1962 चलित मोबाइल यूनिट भी चलती है, 1962 जिसका टोल फ्री नंबर है। इस 1962 टोल फ्री नंबर पर आप अगर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, तो आपके पशुओं का उपचार घर पहुंचकर भी हो सकता है।
1: मानसून पूर्व टीकाकरण से उन्नत पशुपालन, इस विषय पर अभी आपको जानकारी दे रहे थे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश शाह। कृषि संकेत कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 7:10 होने को है। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कुछ ही पलों में।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी।

0: युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर चार नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसिलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभाईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड 4 लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय ITI में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम प्रतिपाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की, साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले की प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगर मालवा कलेक्टर ने कृषि सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोता, स्वीकार करें चंचल का नमस्कार। श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं ये व्हाट्सएप फरमाइशें। सबसे पहली फरमाइश है इन श्रोताओं की, ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर के ये श्रोता हैं, परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ मनोज, श्रीमती पूना विश्वकर्मा, श्रीमती आरती विश्वकर्मा, दीपेश, जागृति मानवी, हर्षिता, तन्नु, मनु विश्वकर्मा और समस्त परिवार और मित्रगण। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से ये संदेश हमें व्हाट्सएप पर ही प्राप्त हुआ। विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतना नाहटा, दीक्षा और कुश मूड़त का। एक और संदेश है, मालवा रेडियो श्रोता संग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम के श्रोता हैं, जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा के स्वर में सावन को आने दो फिल्म से ये गीत।

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें।
1: मंचय गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, ये व्हाट्सएप संदेश हमें मिले इन श्रोताओं के, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश के ये श्रोता हैं, विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, सांगली जिला के जत शहर से, अल्ताफ हुजरे, शैफुल्ला, शबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख, हिंदुस्तान रेडियो मित्र, बन्ने बुजुर्ग, पलेरा टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं मुकेश के स्वर में सबक फिल्म से ये गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।
3: कार्यक्रम मंचाय गीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी सागर से। अगला गीत तो सुनते हैं इन श्रोताओं के अनुरोध पर। आप हैं ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इस गीत को सुनने के लिए और भी हमें संदेश व्हाट्सएप पर प्राप्त हुए। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और समस्त मित्रगण। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, हेमलता कौशल्या और डिंपल देवांगन। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं नीला आकाश फिल्म से ये गीत। इस गीत को आवाजें दी मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने।

0: एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मंच गीत कार्यक्रम आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। इस गीत को सुनने के लिए हमसे अनुरोध किया हमारे इन सभी श्रोताओं ने। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंद किशोर घट्टे, संगीता घट्टे, साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टिप्यूल, PV कुलथे। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबी और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज ST अंसारी और आसमा खातून अंसारी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में फरमाइश पूरी करते हैं श्रोताओं की। आप है मोहम्मद शफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब अलमास पानो, मोइन छोटू, शंकर लाल गंगराडी, वनीता और मोहम्मद हसनैन पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग टीलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में सागर फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न करने की दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में जावेद अख्तर की लिखी ये गजल।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में गैर फिल्मी गजलें आपको सुनवा रही हैं आकाशवाणी सागर से। सुनते हैं परवीन साकर की ये गजल गुलाम अली के स्वर में।

और आइए श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं शेख अदम अबूबाला का ये कलाम पंकज उदास के स्वर में।

श्रोताओं, इस गजल के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 8 बजने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
4: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्र

0: दृढ़ता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
2: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
3: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरी है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दे, यादों से ऊर्जा ले, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं मालती विश्वकर्मा से ये विवाह गारी।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।
3: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
4: लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर से। आइए अब आपको सुनवाते हैं राम कुमार प्रजापति और साथियों से ये विवाह गीत।

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें
1: जंगल से।
2: आकाशवाणी सागर से लोक संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ बंदेली लोकगीत। आप सुनवाते हैं आपको बाल विवाह विरोधी ये लोकगीत। इसे आवाज़ दे रहे हैं राम लखन सेन।

कमजोर, छोटी में ब्याह करे होबे कमजोर है, छोटी में ब्याह करे होबे कमजोर, और कहाँ लो खड़े रहे हो डॉक्टर के दूर, कहाँ लो खड़े रहे हो डॉक्टर के दूर, तो राम लखन दे रहे जो अच्छो सुझाव, राम लखन दे रहे जो साजो

0: छोटे में लड़कन को।
1: श्रोता और लोक संगीत कार्यक्रम में आज हमने आपको सुनवाए मालती विश्वकर्मा, रामकुमार प्रजापति और रामलखन सेन और उनके संगी साथियों के गाए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी सागर से। 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं त्रिशूल फिल्म से ये गीत यशुदास और लता मंगेशकर के स्वर में। ये गीत है, शब्दकार हैं साहिर लुधियानवी और इस गीत को संगीत से सवारा खयाम ने।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। अनवर और सुलक्षणा पंडित ने इस गीत को आवाजें दी, गुलजार की शब्द रचना है और इस गीत को स्वरबद्ध किया खयाम ने।

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें
1: जंगल से।
2: आइए अब चित्रपट संगीत कार्यक्रम में सुनते हैं गुलजार का लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर के स्वर में। आर डी वर्मन ने इस गीत को संगीत से संवारा और फिल्म का नाम घर

मासूम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मां भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर के स्वर थे, गुलजार की रचना आर डी बर्मन ने से संगीत से सवारा था। आइए अब आपको सुनवाते हैं गुलजार का ही लिखा हुआ एक और ये गीत आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आशा भोसले ने इस गीत को आवाज़ दी और फिल्म का नाम इजाज़त

0: के स्वर में शब्दकार थे आनंद बख्शी और इस गीत को संगीत से सवारा था आर डी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी सागर है। 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बातें
2: जंगल से।
1: बातें जंगल से, श्रोताओं इस प्रोग्राम में बातचीत होगी प्रकृति के तत्वों से। आज बातचीत हो रही है घास से।
3: आहा, आपको छूना कितना अच्छा एहसास है घास जी। लोग आपको एक साधारण पौधा समझते हैं, क्या आप अपना परिचय देंगी?
4: नमस्कार साथियों, मैं घास हूँ। बहुत से लोग मुझे छोटा और साधारण पौधा समझकर मेरे ऊपर चल देते हैं, पर सच यह है कि मैं धरती की हरी चादर हूँ। गाय, हिरण, चीतल, खरगोश और कई छोटे जीव मुझे खाकर ही जीते हैं। और केवल मैदान वाली घास ही नहीं, आपके जीवन में मेरे कई रूप रोज आते हैं। आपके टिफिन की रोटी गेहूं से बनती है और गेहूं भी उसी घास कुल का पौधा है। चावल, मक्का और बाजरा भी इसी बड़े परिवार से जुड़े हैं। और आप जो मिठाइयाँ और चॉकलेट खाते हैं उनमें मिठास देने वाला गन्ना भी घास का ही एक बड़ा और मीठा रूप है। इसीलिए मैं छोटी जरूर दिखती हूँ, लेकिन भोजन पशुओं और धरती के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हूँ। मेरे ऊपर चींटियाँ चलती हैं, टिड्डे छिपते हैं और मिट्टी के छोटे जीव रहते हैं, और कई पक्षी इन्हें छोटे जीवों को खोजते हैं। इसी तरह छोटे छोटे जीवों का मोहल्ला भी हूँ। अगर मेरे जैसे छोटे पौधे ना हो तो धरती सूनी, धूल भरी और गर्म लगने लगेगी। इसलिए मुझे समझना मतलब जीवन की जड़ों को समझना है।

0: प्रकाश जी, आप तो इतनी नाजुक सी हैं, कमजोर सी हैं, तो आप हमारे किस काम आ सकती हैं?
1: हाँ, मैं देखने में थोड़ी नाजुक सी लगती तो हूँ, हवा चले तो मैं झुक जाती हूँ, कोई पैर रख दे तो दब जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेकार या कमजोर हूँ। मेरी असली ताकत मेरी जड़ों से है। मेरी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब तेज बारिश होती है तब पानी मिट्टी को बहाकर ले जा सकता है, लेकिन जहाँ घास होती है वहाँ मिट्टी आसानी से नहीं बहती। इससे खेत और मैदान और जंगल सुरक्षित रहते हैं। मैं पशुओं का भी भोजन हूँ। गाय मुझे खाकर दूध देती है, हिरण और चीतल मुझे खाकर मजबूत रहते हैं, और फिर जंगल का पूरा भोजन चक्र चलता है। खेल के मैदानों में बच्चों को चोट से भी बचाती हूँ, क्योंकि मेरी हरी परत जमीन को थोड़ा नरम बना देती है, इसलिए छोटा दिखकर भी मैं बहुत काम की।

0: प्रभास जी, सब कहते हैं कि आप प्रकृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ऐसा क्यों है?
1: मैं प्रकृति के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मैं भोजन श्रृंखला की सबसे पहली सीढ़ी हूँ। जंगल में कई जानवरों का जीवन मुझसे शुरू होता है। मुझे हिरण, चीतल, खरगोश, गाय, भैंस और कई कीड़े खाते हैं। फिर इन जानवरों पर भेड़िया, तेंदुआ या बाघ जैसे बड़े जीव निर्भर करते हैं। इस तरह सीधे नहीं लेकिन चुपचाप पूरे जंगल को संभालती हूँ। मैं हवा को भी बेहतर बनाती हूँ क्योंकि पौधों की तरह मैं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती हूँ। मैं जमीन को ठंडा रखती हूँ, धूल को उड़ने से रोकती हूँ और बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में जाने देती हूँ। इसलिए मेरा होना मतलब मिट्टी, पानी, हवा और जीव जंतुओं को सुरक्षित

सबसे खास बात मेरी सहनशीलता है। आप मुझे काट दीजिए, जानवर मुझे चर ले, बच्चे मेरे ऊपर खेल लें, या गर्मियों में पीली और सूखी दिखने लगूं, फिर भी मैं हार नहीं मानती। जैसे ही बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, मेरी सूखी जड़ें फिर जाग उठती हैं और मैं फिर से हरी भरी हो जाती हूँ। यही बात बच्चों को भी सीखनी चाहिए और हम सब साथियों को सीखनी चाहिए कि जीवन में कभी कभी कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य रखने से फिर नई शुरुआत हो सकती है। मेरी एक और खासियत यह है कि मैं अकेले कभी नहीं रहती, मैं गुच्छों में फैलती हूँ और मिलकर धरती को ढकती हूँ। एक छोटी घास की पत्ती ज्यादा नहीं दिखती, पर लाखों पत्तियां मिलकर एक बड़ा मैदान बना देती है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी कोशिशें भी मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती। मेरी सहनशीलता में विज्ञान भी छिपा है। मेरी कई प्रजातियों की जड़ें जमीन के भीतर सुरक्षित रहती हैं। ऊपर का भाग अगर सूख भी जाए तो नीचे जीवन बचा रहता है। मैं कठिन मौसम के बाद फिर हरी हो जाती हूँ और मेरे जीवन की यही सीख है कि झुकना कमजोरी नहीं होती, कई बार बचने और बढ़ने का एक तरीका होता है।

0: प्रकृति में जैव विविधता ही हमारी पहचान।
1: स्वच्छ जंगल, नदियाँ, वन्य जीव जंतु और हरी भरी धरती हमारी शान।
2: हर छोटे बड़े जीव, कीड़े, पौधे और पारिस्थितिक तंत्र का अनूठा संतुलन ही जैव विविधता है।
1: जैव विविधता को सहेजे, समृद्ध भविष्य बनाए।
3: वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा जनहित में जारी।
4: आप कभी हरी, कभी पीली, कभी भूरी, कभी नाजुक नरम और कभी खुजली करने वाली, कभी चुभने वाली ऐसी क्यों होती हैं?
5: मेरा रंग और स्वभाव मौसम, पानी और मेरी प्रजाति के अनुसार बदलता है। जब बारिश होती है और जमीन में खूब नमी होती है तब मैं नरम और हरी दिखती हूँ, लेकिन गर्मी में जब पानी कम हो जाता है तो मैं अपने अंदर का पानी बचाने के लिए पीली या भूरी हो जाती हूँ। यह मेरी समझदारी है क्योंकि मुझे भी कठिन मौसम में खुद को बचाना पड़ता है और मेरी कुछ प्रजातियां बहुत मुलायम होती हैं जिन पर चलना अच्छा लगता है। कुछ घासों की पत्तियां थोड़ी खुरदुरी या चुभने वाली होती हैं ताकि जानवर उन्हें जरूरत से ज्यादा ना खाएं। कुछ में छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनसे आपको खुजली हो सकती है। यही विविधता प्रकृति को रोचक बनाती है।
4: अरे अरे अरे, पानी की बौछार पड़ते ही आप तो आनंदित सी हो गई। आनंद में डूबी रही है, लेकिन कोई संदेश तो दीजिए।
5: मेरा संदेश बहुत सरल सा है कि प्रकृति में किसी को छोटा या बेकार मत समझिए। आप भी अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रख सकते हैं। मैदानों में कूड़ा ना फेंकें, पौधों को बिना कारण ना उखाड़ें, पानी बेकार ना बहाएं और पेड़ पौधों को दोस्त समझें। घास और छोटे पौधों को रौंदने से बचें। अगर हम छोटी चीजों का सम्मान करना सीख जाएंगे तो बड़ी प्रकृति अपने आप सुरक्षित रहेगी। याद रखिए, धरती की हरी पत्ती जीवन की कहानी कहती है।

0: आज कार्यक्रम में घास की भूमिका में रही उपासना सिंह और अब साहिबा को अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से। बातें
1: जंगल से।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से। यह आकाशवाणी सागर है। 9:10 होने को हैं। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं, सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग। ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सके, जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
3: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
2: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही अधूरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
3: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
2: जी,
3: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
2: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
3: बिल्कुल,
2: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
3: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूं, मुझे वहां 5x तक पहुंचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहां पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूं कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूं कि मुझे 5x तक पहुंचना है क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माय फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशन होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
2: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जो आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
3: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होता है दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
2: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हरेक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं?
3: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती है। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है।

0: तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है, लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहाँ पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितने भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड है, बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ब्लेस्ड भी है, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जींस बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए, और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जींस के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहाँ पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते हैं,
0: जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है। क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाए कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है। और फिर नीड है कि वांट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया एक्स से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच, सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलतफहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे 1 पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना, कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल, तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: Yes.
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं, हमारे मेल्स में हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशन हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का इमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में इमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
1: हाँ,
0: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। वो
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहे कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़े एनवायरमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में।
0: इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे, मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपने अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इंप्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2-4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: 1950 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं।

0: तो आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं।

0: और सारे लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दीपा सिंह धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों के हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत।

चिट्ठी से लोगी सुनमी बारे हमारे सभी बिन्ना भैयारों के लाने सेलू साहू की हाथ जोड़ के राम राम पहुंचाए। भैयारे हम आपके पसंद के लोकगीत लेके आ गए अपने कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत में। और जब पहली चिट्ठियाँ पहुंचाई है भैया ने महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है ब्योहारी जिला शहडोल से, हरिलाल मोची, शंकर राव मोची, लालचंद मोची, देवेंद्र मोची, चरणदास मोची, बेटी नेहा, नरेंद्र मोची और इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है छत्री तालाब अमरावती से, साधना रानी गुप्ता, कविता रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो इन सबकी पसंद पर सुन रहे अपन राम कुमार प्रजापति को गाओ जो लोकगीत।

0: मैयारो अब अपन ने राम कुमार प्रजापति को गाव जो लोग सुनो और अब सुना थे जो जरूरी संदेश।
1: जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

संदेशों के बाद भैयारों को कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। और जो अगली चिट्ठिया पहुंचाई है धर्मश्री मंगल धाम कॉलोनी से, श्याम रेकवार, लक्ष्मी, वंदना, विराज, विक्रम, बादल, विनय, हल्ली, खुशबू, टक्कू, भूमिका और दक्ष रेकवार ने ए लो गीत को सुनबो चाहू है। ग्राम कुमेरिया भटोली, तहसील गड़ाकोटा से भैया रहे हैं महिलाल खैरैया, नन्नू, अर्जुन, रामकरण, बाबूलाल, छेला, जगदीश, उपदेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से सुनबो चाहू है गोरझामर जिला सागर से कुंदन लाल चौरसिया, निर्मोही, अंबिका प्रसाद, विवेक कुमार, वीरेंद्र कुमार, देवव्रत, कार्तिक, आराध्य, नैवेद, मनोज चौरसिया और इनके संगी साथियों ने। तो इन सबकी पसंद पे सुनाते हैं अपन उर्मिला पांडे को गाओ जो लोकगीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: भैया अगले लोकगीत के लाने जा चिट्ठिया पहुंचाई है नेपाल पहले सागर से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपर, राशि, ऋषिका, रॉबिन और इनके संगी साथियों ने ए लोकगीत को सुनबो चाहो है। मोहली तहसील बांदी जिला सागर से शिवनारायण तिवारी, रश्मि तिवारी, नंदनी तिवारी, सत्यम तिवारी, शिवम तिवारी, नितिन तिवारी और इनके परिवार के सभी सदस्य और ए लोकगीत को व्हाट्सएप के माध्यम से फरमाइश पहुंचाई है कलेक्टेड कॉलोनी रायसेन से योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, श्रीमती ललताबाई भारतीय और इनके परिवार के सभी सदस्य और ग्राम पोस्ट वाया तहसील रहठी जिला सीहोर से यही लोकगीत की फरमाइश व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई है अमर सिंह भारतीय, सिखावत सिंह, शाश्वत सचिन, महेंद्र, कोसाबाई भारतीय और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो इन सबकी पसंद पे सुन रहे अपन आनंदी पटेल को गाओ जो लोकगीत।

भैया रो अबे अपन ने आनंदी पटेल को गाव हो जो लोकगीत सुनो और अगले लोकगीत के लाने जा फरमाइश पहुंचाई है ग्राम हिनौता पारिक क्षेत्र पुष्ट ईश्वरवारा जिला सागर से। लिख भी बारे भैयारों के नाम है दिनेश पटेल, हजारी पटेल, महेश पटेल, जयराम पटेल, हरनाम पटेल, कमलेश पटेल, तुलाराम, संजू, नैन्सी, मयंक, सुहानी, स्वाति, मोहित, कंचन, दीपक, गोमती, ममता, रोशन, राजकुमार, प्रीतम, सालक राम, श्रीराम, दयाराम और इनके समस्त ग्रामवासी। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है किशनगंज जिला दमोह से बेनीबाई, कस्तूरीबाई, कमल रानी, सीता रानी, श्याम रानी, आरती, भारती, बीरा, अभिजीत, राजा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ए लोकगीत को सुनबो चाहो है खुरई से दीपेश सेन, दिनेश सेन, मुकेश सेन, नीतेश, संस्कार, निहाल, दीपांशी, नरेंद्र, महेंद्र, मुनमुन, निशी, कार्तिक, मोनू, अंश, सोमना नामदेव, अंश नामदेव, मुन्ना प्रजापति, नीलेश प्रजापति, संदीप नामदेव, नवाब खान, उस्मान खान और इनकी पूरी मित्र मंडली। ए लोकगीत को सुनबो चाहू है आभार माता रोड रामटोरिया तहसील गुआरा जिला छतरपुर से बहादुर चक्रवर्ती, नंदकिशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, हरिराम दशरथ, शीला भाभी, दसोदा भाभी, भागवती भाभी, ममता देवी, उमा देवी, सहारा, रामकली, अंश, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज, खुशबू, आयुषी, शिवांगी, करिश्मा, काजल, भारती, आरती और इनके परिवार के सभी सदस्य और जाफर माए से इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई है। तो चलो भैया सब जने अपन कार्यक्रम के आखिर में सुना थे जो लोकगीत एक हो गा रही हैं रेखा सिंह परमार।

यार अबे अपन जो लोकगीत सुन रहे थे खुंगारन थी रेखा सिंह परमार और ए लोकगीत के संगे कार्यक्रम को समय पूरा होगा सो हमें देव आज्ञा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी से लोकगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने बारी हमारी सभी बहनों को हमारी राम राम पंजाबे। बहनों लेके आ गए आपको अपनो कार्यक्रम। और हमें पता है बहनों कि जैसे आप उन्हें बाट देखती हो कि कब हमारी नई बहन हमसे बतियावे आवे, ऐसे हमारों को भी विशेष इंतजार रहता है शनिवार को कि आज हम अपनी बहनों से जाके बतिया हैं। और बहनों आज अपन बात कर रहे हैं कि जो बसकारो लगा हुआ है तो ऐसी बसकारी में अपन हो अपनों ख्याल कैसे का रखने हैं। बहनों देखो बरसात में अपन को अपनों ख्याल रखने ही पड़ा थे विशेष रूप से। कैसे मौसम कौन हुए जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुए थे उनको असर हमारी सीधी सेहत पे पड़ा थे। तो जैसे अपन हो बीमारियों को से बचने हैं तो अपनों ख्याल तो रखने पर है। मैंने बरसात को मौसम जहाँ गर्मी से राहत दिए थे वो माहौल को खुशनुमा बना थे तो संग संगे कई प्रकार की बीमारियों को भी लेके आऊ थे। जो ही समय रहे थे जब कई प्रकार के कीटों के संगे मच्छरों को भी प्रकोप बढ़ा थे और लोग कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उन बीमारियों में सबसे पहले बात करें तो मलेरिया को नाम आते है। मच्छर जनित इन बीमारियों से बचने हैं तो कछु सावधानियां और कछु घरेलू उपाय करके अपन इन बीमारियों से आसानी से बच सका थे। ऐसे कह रहे बहनों कैसे अपन अगर लापरवाही बरता थे और अगर बीमार हो गए तो फिर और ज्यादा परेशान होने पड़ा थे अपन। इसे अच्छी है कि अपन पहले ही से सावधानियां बरतें कछु ऐसे उपाय अपनावें कि अपन इन बीमारियों से बची रहें। तो बहनों अपने घर के चारों तरफ पानी इकट्ठो न हों दीवे। उन जगह पे गड्ढा होवे उन गड्ढों को माटी से भर दीवे। अब जैसे रुकी भई नालियां हैं उनको सही से साफ करवा लीवे। अगर पानी जमा होवे से रुक वो संभव नहीं है तो फिर उतर पेट्रोल या माटी को तेल डाल देवे और जी में उनमें मच्छर न पनप पावे। और अपने घर की बात करें तो मैंने अपने कमरा में रखे कूलर हैं या फूलदान हैं उनको हफ्ता में एक बार जरूर साफ करें। और देखो ऐसा होते बहनों जैसे अपने घर में कछु टूटी फूटी बाटलें महीन टूटे फूटे डिब्बा वैसे कोई काय कहीं छत पे डाले आपका काम के यहाँ है तो बहनों छतों पे जो टूटे फूटे डिब्बा टायर बर्तन बोतलें अपन हो बिल्कुल नहीं रखने। और जैसे अगर रखने ही हैं रखी हैं तो उनको उल्टो करके रख देने जी में उनमें पानी ने भर पावे। कैसे डेंगू की मच्छर भी साफ पानी में पनपत है। इसे पानी की टंकी को अच्छे से अपन ढांक कर रखने। अगर हो सके तो खिड़कियों और दरवाजे में महीन जाली लगवा लेने। मच्छरों को घर में आवे से अपन ई तरीके से रोक सकते हैं। मैंने मच्छरों को भगावे या मारवे खिलाने कई मच्छर नाशक क्रीम स्प्रे को भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। और बहनों अगर इनको उपयोग आपको नहीं करने तो सरल सा उपाय है कि आप नीम की पत्ती को धुआं कर सकते हैं। मैंने घर के भीतर सब जगह हफ्ता में एक बार मच्छर नाशक दवाई को छिड़काव अपन जरूर करें। और ज्यादा दवाई बहनों जैसे अपने कैलेंडर भाई पर्दा भाई या ऐसे कोनिए भाई तो उतरे जरूर छिड़कें। कैसे इनके पीछे जैसे घर के स्टोर रूम भाई या सभी कोने भाई जितने भी इनके पीछे अपन जरूर छिड़कने जिमें मच्छर इन कोनों में छुपने पावे। कैसे बहनों मच्छर ऐसी जगह पे खास तौर से छुपाते हैं जिमें अपन उन्हें देखने पावे तो इसे ऐसी जगह पे छिड़काव करवो बहुत जरूरी हो जाते है। मनो बहनों एक बात को भी ध्यान रखने अपन हो कि जब अपन छिड़क रहे हैं बस दवाई उस समय अपने मुंह पे या नाक पे कपड़ा जरूर बांध लीवे। और संग संग अगर उतर खावे पीवे की कोनों चीजें रखी हैं तो उनको ढांक के रख देवे जिमें जब दवाई उतर न पहुँच पावे। मैंने ई मौसम में पीवे बारे पानी से भी कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं तो ई मौसम में पीवे बारे पानी को शुद्ध करके पीवे। अब पानी को शुद्ध करने के तो बहुत से उपाय हैं। मनो सबसे अच्छा और सरल उपाय है कि अपन पानी को उबाल के पीवे जिमें पानी की वजह से होवे बारी जो बीमारियां हैं उनसे अपन बची रहे में बीमारियां अपन को न हो पावे। अब आता था मैडम छोटे बाल बच्चों की बहनों तो ई मौसम में छोटे बच्चा भाई अपने बुजुर्ग भाई घर के या हमारी गर्भवती बहनें भाई उनको भी विशेष सावधानी बरतने हैं जिमें कोनो परेशानी को सामनो अपन को न करने पड़े। तो बहनों ई मौसम में ऐसे कपड़ा पहनने जिमें शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढकूरे वे खास करके बच्चों के लाने तो ऐसे कपड़ा जरूर पहनावे जिमें बच्चा मच्छर जनित बीमारियों से बची रहे। कैसे ई मौसम में बच्चा खास तौर पे छोटी मोटी बीमारियों से तो पीड़ित होता ही है मनो मलेरिया से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसे खास सावधानी अपन बच्चों के संगे जरूर बरतने हैं। मैंने बरसात के मौसम में बीमारियां अतिरिक्त सावधानी के बावजूद भी अपन देखा थे घर में आ जाती हैं। जैसे सर्दी जुकाम तो ई मौसम को हो वो आम बात है।
मैंने सर्दी जुखाम में अपन प्राकृतिक इलाज जैसे सौंठ की चाय, अदरक लहसुन, प्राकृतिक विटामिन और जड़ी बूटियों के सेवन से भी बहुत आराम मिलत है। ई मौसम में औषधि वाली गर्म चाय होते है, इसे सेवन से गले में जैसे खराश है तो उनमें भी अपन हो आराम मिलत है। इनमें मैंने दालचीनी है, काली मिर्च है, जायफल है, लौंग है, अदरक या तुलसी की पत्ती डाल के जैसे अपन अगर चाय बनाए तो सर्दी जुकाम में लाभ होते है। मैंने काली चाय भी बहुत गुणकारी होते है, तो इके सेवन से गले की खराश और सिर दर्द में भी आराम मिलत है। मैंने ई मौसम में रोगों में अपन वृद्धि देखने में तो आता ही है, खास करके संक्रामक रोगों में ई मौसम में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाव सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते है। कैसे संक्रामक रोगों से बचवे के लाने अपन को बस इतो करने हैं कि शुद्ध पानी पीने, अपने आसपास साफ सफाई बना के रखने, नियमित रूप से अपन रोज सपन्ने हैं और अपने हाथों को समय समय पर साबुन से धोने हैं और साफ अपन हाथ रखें। और अपन देखा थे कि ऐसे मौसम में बहुत जल्दी संक्रमण फैलाते हैं, तो अगर अपन साफ सफाई को ध्यान रखें तो अपन इन छोटी छोटी बीमारियों से बहनों बच पाए। और बहनों आप चर्चा तो अपनी और भी आगे हुई है और अब बहने कह रही हैं कि जी तो शुरू भाई हैं तो रुकवे को नाम नहीं ले रही, तो वहाँ बहनों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अपनी चर्चाएं भी चल हैं और आपको मनोरंजन करा वो भी जरूरी है। तो चर्चा तो अपनी आगे और हुई है, मनो ये चर्चा के बाद आपको मनोरंजन की तरफ ले चल रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं मालती विश्वकर्मा को गाव जो विवाह गीत।

बेनो अब मालती विश्वकर्मा को गाँव भजो लोगी सुनो। और बेनो अब बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की। हाँ बेनो, आज है 11 जुलाई और आज है विश्व जनसंख्या दिवस, और जो दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहल पे भई हती। दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ रही हती और फिर जो महसूस करूंगा कि ई विषय पे वैश्विक स्तर पे चर्चा और जागरूकता जरूरी है। और जो दिन परिवार नियोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध करावे जैसे विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दिवस को मनावे को मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही आबादी और उससे जुड़ी चुनौतियों और उनके बारे में जागरूक करना है। कैसे बढ़ती जनसंख्या से केवल संसाधनों पर दबाव नहीं बढ़त, बल्कि इको सीधो असर हमारी सेहत पर भी काफी परत है। ज्यादा जनसंख्या से प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ती हैं। फिर जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में संसाधनों और रोजगार के अवसरों की कमी से गरीबी और बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है। विश्व जनसंख्या दिवस के इस खास दिन पे पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के आयोजन भी करे जाते हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ती जनसंख्या और उनके नुकसान के प्रति जागरूक करो जा सके। मैंने भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और कोरोना काल में जनसंख्या ज्यादा होने से समस्या को संभालने में बहुत दिक्कतों को सामना करने पड़ो, जैसा अपन को पता ही है। और इसे जनसंख्या वृद्धि को लेकर कोविड महामारी से सबको सबक लो चाहिए और देश के संगे विश्व में भी जनसंख्या वृद्धि को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। इसे एक स्वस्थ समाज के लाने, खतरा को कम करने और आने वाली पीढ़ी के लाने एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य दे सके। इसे विश्व जनसंख्या दिवस पे और समय की मांग को देखते भाई जनसंख्या वृद्धि पे चिंतन करें और परिवार और समाज के स्तर पे इको रोकवे को पूरा प्रयास करें। कैसे बहनो, जहाँ अपन उन्हें जानते ही हैं कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ा थे तो कितनी परेशानी होते, कैसे हमारी बहन अब समझ सकती हैं कि घर परिवार को पूरा लेन देन सब खर्चा उनके हाथ में रहता है। अब जा सोचो, जो उनके घर में दो बाल बच्चे हैं उनके तो कम खर्चा है और जो उनके तो छह बाल बच्चे हैं उनके तो खर्च भी ज्यादा रहते हैं और भी अन्य दूसरी परेशानियां भी ज्यादा रहती हैं। तो एक इतने छोटे उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि जब परिवार में अगर ज्यादा सदस्यों की संख्या रहते तो अपन को कितनी परेशानियां होती हैं। तो ऐसे ही अगर अपने देश की भी संख्या बहुत अधिक पैमाने पे बढ़े तो देश की भी कई समस्याएं सामने आए हैं। तो जो अपनी ड्यूटी बनाते हैं, जो अपनों कर्तव्य बनाते हैं कि इन सब विषयों पे ध्यान दे के जागरूक हो के, और अब ऐसे दिवस जो मनाए जाते हैं बहनों तो भी एक ही लाने मनाए जाते कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो गए और इस तरफ ध्यान दे के इनको अमल में ले आवें। और ये दिवस जब ही सार्थक हुई हैं, जब अपन इनको अमल में ले आए हैं और इको असर अपने समाज में और देश पर देख भी मिल है, तो हम तो जय के हैं मैनो कि इस दिवस पे हमारी बहनें भी जो प्रण ले में कि परिवार को सीमित रखें और देश में बढ़ रही जनसंख्या पे रोक लगावे में अपनो पूरा सहयोग करें। और बहनों, चर्चा अपनी और हुई है, मनो आपको फिर एक लोकगीत सुनवा रहे हैं और एक गा रही हैं शकुंतला राजपूत।

मैनो अब बात करें अपन पर्यावरण की, ओके संरक्षण की। मेरे जो अपन और को सबको पता है कि हमारो पर्यावरण कितो नशा रहो और इखो नशाबी में हम सबको हाथ है। कैसे पहले जंगल कटे, पहाड़ खोदे गए, धरती गर्भ से खनिज को उत्खनन भी बहुत हो रहा है, जिसे हमारे पर्यावरण को संतुलन बिगड़ गओ। और जो अपन सब देख ही रहे हैं, विकास भी बेनो बहुत हो रहे हैं, मनो विकास के संगे एक समस्या भी आ गई जय पर्यावरण की। और बेनो ई समस्या के संगे प्लास्टिक के रूप में एक और बड़ी समस्या आई हमारे सामने। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो जो पन्नियाँ होती हैं पॉलीथीन की थैलियाँ, वो से भाव है। कैसे मैनो हम बाजार से सामान तो लेके आउते हैं, मनो बाद में बे थैली अपन कूड़ों के ढेर में फेंक दी थे।

है वो उत्पादन भी कम होने लगा थे। इस बिन हमाओ सभी जनों से जो कहो है कि इन पॉलीथिन को उपयोग बंद करके कपड़ा की थैली और पेपर बैग को उपयोग करें जिसे हमारा पर्यावरण संरक्षक हो सके। बिनो जब हम इसे भी कह रहे कि पेपर बैग हम सब इसे करें उपयोग, कैसे कल माने 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस है और जो दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाओ जाते है। ई दिवस को मनावे को मुख्य उद्देश्य जो ही है कि हानिकारक प्लास्टिक के उपयोग को कम करके पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देवो है, जिमें लोग ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग को उपयोग करें और पॉलीथिन को उपयोग कम करें जिमें हमारा पर्यावरण ने नशा पावे। तो बेनो कल विश्व पेपर बैग दिवस की दिना अपन सबको जो प्रण लेने हैं कि हम पॉलीथिन को छोड़ के पेपर बैग को उपयोग करें और अपने पर्यावरण को नशावे से बचे हैं। कैसे बहनो, कई बार का होते हमारे भैया रखो बहनों हो सबको जा बात पता है कि जब पॉलीथिन कितनी नुकसानदायक हमारे पर्यावरण को, मनो के बाद भी अपन को उपयोग नहीं छोड़ रहे। कैसे बाजार ऐसे ही चले गए बिना थैला के, वो दुकानदार से कह पन्नी में रख दी कोनो भी सामान जो अपन ने लाओ और लेके जल्दी से भाग आए। अब जी आते मैंने ऐसा पड़ गई मनो, जब जो पन्नी को बहनो निर्माण भाओ तो कौन ने सोची हुई है कि पन्नी को निर्माण सुविधा के लाने भाव है जब आगे चल के अपने के लाने कितनी ज्यादा नुकसान पहुंचे है। कैसे सुविधा तो अपन ने देख ली कि अपन थैला नहीं ले जाने पड़ रहा घर से, मनो जब उनके परिणाम अपने सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, अपनो पर्यावरण नशा रहा है, अपने जानवरों को नुकसान हो रहा हो, अपन खुद नुकसान हो रहा हो, तब अपन समझ में आ रही कि अपन जा कितनी बड़ी गलती करते हैं। कैसे बहनों, जब पन्नी ऐसी है कि देखो माटी के भीतर भी दबी रहे तो भी वह नष्ट नहीं होता, आज अगर अपन उन्हें जला के खत्म करें तो जो धुआं निकलते वो भी आगे चल के वायुमंडल को नशाते हैं। तो जब पन्नी मेनो बहुत नुकसानदायक है तो ई को उपयोग कम करें और जब भी अपन बाजार जावे तो कपड़ा को थैला और पेपर बैग को उपयोग करें जीवे अपन प्रदूषण से बच सके। और बहनों अपन जानते हैं कि बसकारो शुरू होगा है और बसकारी में बहनों पेड़ पौधा लगा वो जानी कह रहे बहनों को बसकारी में लगा, मैं हर मौसम में लगा सकते हैं मनो बहनों, ई मौसम में अपने पेड़ पौधे ज्यादा अच्छे से समर जाते हैं, जल्दी लग जाते हैं। तो अपने पर्यावरण को बचावे के लाने ज्यादा से ज्यादा बहन भैया हरे बाल बच्चों को भी सिखाएं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावे जिमें अपनो पर्यावरण हरो भरो बनो रहे और ऊको जो दुष्प्रभाव अपने ऊपर पड़ रहा है उसे अपन बची रहे। और बहनों देखो अपन देख रहे कि पानी उतो नहीं गिर रहा जितो गिरो चाहिए, कैसे पिछली साल अपन ने देखो तो के इसे ज्यादा भी बरसा हो गई है। तो फिर अपन हो पानी की परेशानी आगे चल के नहीं आवे तो पेड़ लगावे के संगे संगे अपन हो जल को संरक्षण भी करने हैं जी में जो जो फालतू पानी बह जाते है बरसात को वो इकट्ठो करके अपन बाद में उसको खेती में उपयोग कर सके। और बेनो जाहती अपनी चर्चा और अब घड़ी कह रही है कि आप औरों से हो रही है विदा लेबी की बीरा, तो हमें देव आज्ञा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलील चौधरी का संगीत।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

0: जिंदगी भागी से सोती रातों में जागी से मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती पर, अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और

0: एंड मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे कब्बन मिर्जा की आवाज में। निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल यार, रहमान का संगीत।

1947 अर्थेस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर उड़ इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी। कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है। कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा पूछिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं। दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, जरा बूझते रहिए, आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौकों पर दीप जलाते हैं आप, जरा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चित्रोर फिल्म का गाना था येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहा पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज

के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि यहाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब? तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरू, सुल्तानपुरी के संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से, सुबह शाम, उदास, तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान, सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गजब का है। ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं। बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। जरा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए, उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा। और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी। और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, बसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूँ तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूँ, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को ना लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसके निशाने अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूं ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहां इसे इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास ख़ास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुज़ुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिल लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफ़र। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्ल होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा।

फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें

स्वदेश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण, मास्टर विग्नेश, बेबी पूजा की आवाज में, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत यार रहमान का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना है। इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज आयोजित होने वाला माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नए अवसरों पर संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
1: 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष बनाकर प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में युवा और खास करके यूथ कॉन्क्लेव का आज का जो आयोजन है, ये हमारे भविष्य के मध्यप्रदेश के साथ आज का मध्यप्रदेश भी मजबूत बने, युवाओं को सब प्रकार का रोजगार मिले, उनके सपनों को पंख लगे, सरकार की योजनाओं के साथ उनको जोड़े और अब एक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने का बहुत बड़े पैमाने पर काम जारी है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता रथ

0: रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिंड जिले के मुकेश सिंह भदौरिया ने योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। मत्स्याखेट पर लगे प्रतिबंध के बीच मत्स्य पालन विभाग ने नर्मदापुरम जिले के डोंगरवाड़ा और सुहागपुर में कार्रवाई कर 2000 किलो से अधिक मछली जब्त की है। शिवपुरी जिले में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रोजगार कार्यालय में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। आगर मालवा कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन और अपार आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
3: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
2: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
4: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी

0: सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
0: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि INS महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: INS महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
4: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और

0: इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिल लुधियानवी का लिखा गाना। संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहेगी। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन, और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी। और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी, कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार गांव

लाला काठिया वार्ड से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी। और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एन आर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पीठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालूका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन अ वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओ यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह, दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूत पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो, आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: बाबा।
1: तो तू कहाँ था?
0: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
1: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
0: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला गोला मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
0: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमां, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
0: अच्छा बाबा। खुदा हाफिज बाबा।
1: अल्लाह हाफिज।

0: घड़े खमान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगनियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुकुम अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुकुम अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोली पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैतों और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहां आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी ज़बान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
4: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: कनी कनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: घर पे भारी डकैती, बीडी बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट के फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस में भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के प्लान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांधकर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।

0: Good afternoon, Your Majesty. His Highness of Jaisalmer.
1: आइए आइए. Welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए.
0: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया. हमारा मिशन है ऑपरेशन सर्च. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता.
1: बड़े शौक से मिस्टर हर्सन, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी. आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो.
0: ओह यस योर हाइनेस, सिंध सुबह का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है. गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है. इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता.
1: जरूर मिस्टर हर्सन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे.
2: राम सिंह.
3: हुकुम अंदाता.
1: हर्सन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है. रियासत के चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे. इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं.
0: That's very good. Thank you, Your Highness.

0: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
1: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
0: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पोख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
0: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
0: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहाँ मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रहीम भाई पानी कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूँ करीमा। माल कहाँ?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई। सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई। तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?

0: जो अब तक रास रहा है उसे रास ही रहने दे करीमा।
1: मेरी बात मानो रहीम भाई, चलो मेरे साथ।
0: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
1: ऐसा मत बोलो रहीम भाई, ऐसा मत बोलो।
0: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना, पानी

0: जाएगी।
1: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
0: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
1: चलो रही भाई, मैं ले चलता हुआ।
2: हेलो हेलो,
1: या खुदा तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
0: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है सही माँ, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
0: आमीन। अलविदा बाबा।
2: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। जिस रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ऊझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिए जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविद भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
2: जी,
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और न्यू कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था। नाचना गाना
2: जी,
3: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली। और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और

0: संगीत रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है जो कला क्षेत्र से आप हट जाए तो शायद हम लोग भूखे मर जाएं, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
0: जी
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन ले।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
1: क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ये जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं, अपने अपने

0: फील्ड में
1: जी।
0: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
1: जी जी।
0: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
1: तो कभी भाई बहनों में कोई कॉम्पिटिशन रहता होगा?
0: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना, वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
1: जी जी।
0: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
1: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा।
0: जी जी।
1: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
0: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी।
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं,
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति, कि इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
1: जी, जी।
0: और वही पुरी साहब में था।
1: जी।

0: कुमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात, फीलिंग्स, वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी, और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी, जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं, और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनाओ
0: ये तो आपने क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है।

0: धन्यवाद।
1: शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले।
0: वाह बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुपके कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल, जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए?
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी। और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली में।
0: जी,
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, तो जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी। मेरी

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज़्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लिखने के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आपकी रचनाओं में जो आपकी किरदार है वो बहुत जीवंत है। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं? या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी।
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना, भावनाओं का तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ

0: आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे। वो 9 महीने आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, 2 और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो। 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे है ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना था,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
1: जी। जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इस गीत।

0: सुषमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जैसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना, आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का, 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं,
0: हर पलम सीखती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
1: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना, वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
0: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
1: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
0: जी।
1: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए ताताई आते गए, तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ, मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी,
0: आउटस्पोकन
1: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
0: जी।
1: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
0: जी,
1: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
0: उनकी मेहनत
1: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतू खैरा कोई भी बन जाएगा
0: जी,
1: स्टार
0: जी,
1: नहीं बनते है ना
0: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
1: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
0: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा।

0: 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहर से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद में कहा कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। साथ ही आज हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, होंगी कुछ अन्य जानकारियाँ और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे महान साहित्यकार के विषय में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत विभाजन की त्रासदियों, सांप्रदायिक राजनीति की भयावहता और आम आदमी के संघर्षों का अत्यंत सजीव और सरल भाषा में चित्रण किया है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। मुंशी प्रेमचंद्र की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हें एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं तमस, झरोखे, बसंती, कुड़िया, कुंतो, जिसमें तमस उनका सबसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास है। ये भारत के 1947 के विभाजन के समय हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास में धार्मिक कट्टरता और राजनीति की भयावहता को उजागर किया गया है। उपन्यास झरोखे में मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं, रूढ़वादिता और सामाजिक संघर्षों का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास बसंती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक मेहनतकश और संघर्षशील लड़की की कहानी है। वहीं कुछ उपन्यासों में मानवीय संबंधों की जटिलताओं, वैज्ञानिक पहलुओं और बदलते सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। दोस्तों एक उपन्यासकार होने के साथ साथ भीष्म साहनी ने 100 से ज्यादा कहानियां भी लिखी। उनकी कहानियों में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना गहराई तक दिखाई देती है। प्रमुख कहानियां हैं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, वागनचू, पाली और पटरियां। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख और निशाचर शामिल हैं। प्रमुख नाटक हिंदी रंगमंच और नाटक की दुनिया में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटक अपनी वैचारिक गहराई और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे हानुष। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो अपनी कला के प्रति समर्पित हैं और उसे संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। वहीं नाटक कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के दर्शन और उनके सामाजिक सुधारों पर आधारित है। दोस्तों साहनी जी एक उत्कृष्ट अनुवादक भी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई और प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी की जीवनी बलराज माय ब्रदर अंग्रेजी में लिखी। उन्होंने रूसी भाषा से कई कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया, जिसमें टॉल्स्टॉय का उपन्यास पुनरुत्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भीष्म साहनी जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए कई सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया। उनके उपन्यास तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में पद्म भूषण, 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप। इसके अलावा 1983 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 1981 में एफ्रो एशियाई लेखकों का लोटस पुरस्कार भी मिला। दोस्तों 11 जुलाई को महान हिंदी लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हें सत सत नमन। दोस्तों अब हम सुनते हैं ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, आजा नचले फिल्म से।

दोस्तों, अब हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के विषय में, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य भारत की सदियों पुरानी और बिखरी हुई पांडुलिपियों को खोजना, उनका दस्तावेजीकरण करना और आधुनिक तकनीक व डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें संरक्षित करना। इस मिशन का लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा जैसे दर्शन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला को सहेजना और दुनिया भर के शोधकर्ताओं व आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। इसके तहत पूरे देश की बिखरी हुई पांडुलिपियों की जानकारी एकत्र करने के लिए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। ताड़ के पत्तों और भोजपत्र जैसे प्राचीन दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जटिल संग्रह यानी कृत संपदा रिपोजिटरी का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, संस्थान या परिवार जिसके पास प्राचीन पांडुलिपियां हैं, वो ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से सीधे तौर पर इस सर्वेक्षण में शामिल होकर जानकारी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में, स्वदेश।

0: दोस्तों, हम स्कूल की पढ़ाई के साथ दूसरे कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
1: दोस्तों, आज मेरे साथ हैं शुभी द्विवेदी और आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरे साथ शुभी हैं और शुभी नीट की तैयारी कर रही हैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ।
2: नमस्कार, मेरा नाम सुभी द्विवेदी है। मैं जिला रीवा से हूँ और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं स्कूल के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रही हूँ।
0: तो शुभी, आप ये बताइए, आप स्कूल के साथ साथ नीट की तैयारी कैसे कर पा रही हैं? आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रही हैं? कैसे आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नीट की परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए समय निकाल पा रही हैं?
2: जी, पहले तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं 3 से 6 बजे तक थोड़ा रिवीजन करती हूँ, फिर 6 से 8 बजे तक मैं थोड़ा सुबह का रूटीन और स्कूल के लिए रेडी होना।
0: अच्छा,
2: फिर 8 बजे के बाद मैं खाना वगैरह खा करके स्कूल चली जाती हूँ, फिर 10 से 4 का मेरा स्कूल है, 4 से 8 तक का मेरा ट्यूशन है नीट का। अच्छा, ऑनलाइन है,
0: ऑनलाइन कोर्स लिया आपने? हाँ, नीट के लिए।
2: हाँ, फिर अच्छा। फिर 8 से 8:30 तक मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, फिर 8:30 से 10 तक मैं थोड़ा होमवर्क वगैरह करती हूँ स्कूल और ट्यूशन का, फिर 10 से 11 एक बार रिवीजन करके फिर सो जाती।
0: किसका रिवीजन करती हैं आप 10 से 11?
2: नोट्स का, जो नोट्स बनाती हूं।
0: तो नीट का या स्कूल का?
2: दोनों का सेम सिलेबस रहता है।
0: सेम ही सिलेबस,
2: बस थोड़ा नीट में थोड़ा डिटेल से और स्कूल वाले में थोड़ी ज्यादा थ्योरी रहती है और नीट वाले में थोड़ा न्यूमेरिकल्स।
0: अच्छा, मतलब नीट के सिलेबस के हिसाब से आप रात में भी उसका रिवीजन करती हैं और फिर सोती हैं, है ना? अच्छा
2: जी,
0: ठीक है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी करना आपको आसान लगता है?
2: हाँ, इजी है, दोनों का सिलेबस सेम ही है।
0: मतलब कोई स्टूडेंट चाहे तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी कर सकता है?
2: हाँ, कर सकता है।
0: अच्छा,
2: हाँ, चाहे तो कर सकता है।
0: तो बाकी श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहती है जो आप ही की तरह अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं?
2: उन्हें मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप भी चाहे तो अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने एम के लिए टाइम दे सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, तो आपको जो ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा। सो और आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा इस टाइम में।
0: मतलब बाकी जो स्कूल के बाद बचा हुआ समय है उसको आप दूसरे कोर्सेज की तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं, है ना?
2: हाँ
0: जी, बहुत अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी पढ़ाई के लिए।
2: ठीक है, थैंक यू।
0: दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत दिल कबड्डी फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे असम के चराईदेव मोईदाम के बारे में। ये अहोम राजवंश के शाही परिवारों और राजाओं के ऐतिहासिक समाधि टीले हैं। इन्हें अक्सर असम के पिरामिड भी कहा जाता है। ये स्थान अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। दोस्तों, 1253 ईस्वी में अहोम राजा चाओलुंग सिउकाफा ने इसे अपनी पहली राजधानी बनाया था। 600 वर्षों के अहोम शासन के दौरान चराईदेव मोईदाम को प्रतीकात्मक और पवित्र केंद्र माना जाता रहा। इन समाधियों में मृत राजाओं के नश्वर अवशेषों को उनकी संपत्ति, आभूषण और अन्य जरूरी चीजों के साथ गुंबद के आकार की तिजोरियों में दफनाया जाता था और ऊपर से मिट्टी का टीला बना दिया जाता था। दोस्तों, चराईदेव मोईदाम एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो असम के चराईदेव जिले में स्थित है, जो कि शिवसागर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हरिहरन की गाई इस गजल से। कलाम है इब्राहिम अश्क का।

दिल की बात इस एल्बम से अभी आपने हरिहरन की आवाज़ में इब्राहिम अश्क का ये कलाम सुना। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाती हैं अ जर्नी एल्बम से ये गज़ल। कलाम है राणा अकबराबादी का और आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

अ जर्नी एल्बम से अभी आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल सुन रहे थे। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: का व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
5: आकाशवाणी के सागर केंद्र से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ गैर फिल्मी गजलें। और आइए अब सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

सोनाली राठौर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के आखिर में आपको सुनवाते हैं फुरकत एल्बम से ये गज़ल। आवाज़ है पंकज उदास की और कलाम है सरदार अंजुम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

पंकज उदास की गई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर

0: देश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग अब हम आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फिल्म का नाम सन्यासी।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म का नाम था सन्यासी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जिंदा।

0: गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं अनु मलिक।
1: I love you. You love me? I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो?

ही मेरी जान है दिलवा। दुनिया हो या खुदा, किसमें है ये हाथ।

0: आशा भोसले और शबीर कुमार को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था एक जान है हम।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
5: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और आशा भोसले की। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन राहुल देव बर्मन की है।

0: फिल्म पड़ोसन के इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
1: तराने

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम सदाबहार गीत का, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल ने फिर याद किया से ये गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीतकार हैं GL रावल और संगीतकार हैं सोनिक ओमी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे दिल ने फिर याद किया फिल्म से ये गीत। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आरजू फिल्म के इस गीत में आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत, और श्रोताओं सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत संतोष फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

संतोष फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम लोक रंग का। तो श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुछ विवाह गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं बद्री प्रसाद परदेसी की आवाज़ में ये विवाह गीत।

बद्री प्रसाद परदेसी की आवाज़ में अभी आपने ये विवाह गीत सुना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिनेश नंदिनी और सखियों का गाया हुआ ये वरमाला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं सागर हूँ।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
4: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग, और कार्यक्रम का आखिरी लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं सिकंदर सिंह यादव का गाया हुआ। आइए सुनते हैं ये विवाह गीत।

सिकंदर सिंह यादव के गाए इस विवाह गीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित

0: करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया। न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए आपको जानकारी दे दें हमारी आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की और हमारी कल की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में शाम 7:10 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 7:20 से आप सुन सकते हैं खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8 बजे से, और रात 8:15 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। आज रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विश्व जनसंख्या दिवस

दिवस पर ये विशेष भेंटवार्ता होगी और इसका विषय है भ्रांतियों को दूर भगाएं, परिवार नियोजन अपनाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति चौहान वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे। जय शिखर। समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आप सुन सकते हैं रात 9 बजे से, और रात्रि 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी आज की प्रसारण सभा का समापन होगा। और श्रोताओं, अब जानकारी कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह 6:30 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। कल इसका 46वां भाग आप सुनेंगे। कुछ पुराने फिल्मी गीत आपको सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के तहत। प्रसारण समय होगा सुबह 6:40 का। दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 बजे से। 7:05 पर होगा कार्यक्रम कृषि संकेत, और कल सुबह 7:20 से आप सुन सकते हैं साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संयोजन व प्रस्तुति होगी दीपक निषाद की। संगीत सरिता का प्रसारण समय होगा सुबह 7:50 का। समाचार प्रभात का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे से। 8:15 पर आप सुन सकते हैं बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। बाल श्रोताओं को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा सुना जा सकता है कल सुबह 8:30 से। सुबह 9 बजे से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बातें जंगल से, और 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10:05 से 11 बजे तक होगा फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, और 11 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का आनंद आप ले सकते हैं। शाम 5:02 पर होगा युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। शाम 5:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। 5:40 पर होगा संगीत सरिता, और 6:30 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत। शाम 6:45 पर और शाम 7:20 से आप सुन सकते हैं बुंदेली लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। शाम 7:30 से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे ग्राम सभा। रात्रि 8 बजे से आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से ही रिले किया जाएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर आप सुन सकते हैं डगर विकास की। कल का विषय होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति होगा। 8:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रपट संगीत, और रात 9 बजे होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत। रात्रि 11:10 पर समाचारों के साथ ही हमारी कल की प्रसारण सभा का समापन होगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की और कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को हो जाएगा दोगुना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा।
2: 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी का परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था।
0: वहीं महू के युवा किसान जितेंद्र पाटीदार ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण किसानों की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है। मार्केटिंग और डिजिटल तकनीक से प्राकृतिक उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
3: मैं जितेंद्र पाटीदार, निवास ग्राम सिमरोल, विकासखंड महू, जिला इंदौर का प्राकृतिक खेती करने वाला एक कृषक हूँ।
4: प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, भूजल संचय, जैव विविधता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम संतुलन और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
0: सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना था। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है और इनके जरिए देश की संस्कृति और ज्ञान परंपरा की जानकारी लोगों तक पहुँचती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को जिला भिंड के लहार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा अंतरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं की शुरुआत से अब तक की 38वीं नियमित मासिक किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। आज इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनी विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। आज और भविष्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग ने लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की। खंडवा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आगामी 13 जुलाई को आयोजित होगी। देवास जिले में डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया अभियान का संचालन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। नर्मदापुरम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए 15 जुलाई को नर्मदापुरम में युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन होगा। जबलपुर में व्यापार और उद्योग जगत में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वुमेन्स विंग का कार्यक्रम कल रविवार को आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को शशि और
1: रज्जू भैया की राम राम।
0: और रज्जू भैया देखो अपन आज किसान वाणी कार्यक्रम लेके आ गए हैं और आज के कार्यक्रम का कैसे रहे हैं सो अपने किसान भैयारों को आप बतावे।
1: बिल्कुल बिन्ना, देखो खेती किसानी की चर्चा तो अपन कर रहे हैं, संगे संगे आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है, ये बारे में भी चर्चा कर भी, और संगे संगे आज शनिवार भी है, तो शनिवार को साप्ताहिक क्रम होते आकाशवाणी गांव में
0: हाँ।
1: तो जो भी लेके आए हैं और मनोरंजन के लाने लोकगीत भी लेके आए हैं, रोज की तरह मंडी के भाव और मौसम की जानकारी भी दे हैं।
0: बिल्कुल भैया,
1: मनोचर्चा को आरंभ अपन कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस से।
0: बिल्कुल भैया, देखो वैसे तो रज्जू भैया अब अपने किसान भैया हरे खूब ही व्यस्त चल रहे हैं, ताकि जैसे ही बरसात को मौसम आउट है सो खरीफ की फसलों की बुवाई होने लगा थे, सोयाबीन है, उड़दा है, मूंग है, मक्का की बुवाई, धान की रोपाई, इसके अलावा खरपतवार की समस्या भी बनी रहे थे और जल भराव की समस्या भी आउट रहे थे। ऐसे में किसान भैयाओं को बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: अब भैया देखो जागरूकता की बात आई है, जागरूक रहने की बात आई है, तो आज
1: देखो खेती किसानी में तो जागरूक किसान भैया हरे हैं ही
0: हाँ।
1: और अब देख भी रहे हैं वे जितो पानी गिर रहा है वो हिसाब से मौसम के हिसाब से अपनी फसलों की देखरेख भी अपन को करना है। लेकिन आज विश्व जनसंख्या दिवस है
0: हाँ।
1: 11 जुलाई को हर साल जो मनाओ जात है हाँ। और एक उद्देश्य जो है कि जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पे वैश्विक चेतना जागृत करवो है।
0: बिल्कुल भैया।
1: और जो आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा स्थापित करोगा तो और 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन दिवस में सार्वजनिक हित से प्रेरित हतो, जे की अनुमानित तारीख जे पे दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी और विश्व जनसंख्या दिवस को उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पे लोगों को जागरूकता बढ़ावो, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकारों को महत्व वगैरह।
0: बिल्कुल भैया, और देखो ऐसी बढ़त भई जनसंख्या विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है भैया। बढ़त भई आबादी की मार प्राकृतिक संसाधनों को झेलने पड़ रही है, पानी की उपलब्धता भी इसे प्रभावित हो रही है और इस बारे में पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कड़ी सोच अपनाने की जरूरत है भैया। और अपन सभी को संतान प्राप्ति की पारंपरिक सोच को बदल रही है।
1: बिल्कुल बिन्ना
0: है,
1: अब जनसंख्या को तो वृद्धि की जो समस्याएं हैं, अपन एक पुरानी कहावत से समझ सकते हैं कि एक अनार और 100 बीमार।
0: बिल्कुल,
1: तो जो संसाधन है, मानव संसाधनों की बात हो चाहे प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, वे सीमित है।
0: बिल्कुल,
1: उनके ही हिसाब से अगर जनसंख्या रहे तो उनको पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब जो उनकी जरूरतें हैं वे पूरी होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर जनसंख्या बढ़ है तो प्राकृतिक संसाधनों पे, मानव संसाधनों पे दबाव बढ़ है और उससे समस्याएं पैदा हुई हैं।
0: बिल्कुल भैया, देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पे भी बुरा असर देखोगा है। अगर ज्यादा बाल बच्चा हो जाते हैं तो देखो जो घर की बिटियां रहती हैं तो उनके खावे पीवे पे, पढ़ाई लिखाई पे भी भेदभाव रखो जाते हैं। तो भैया अपन सभी को जनसंख्या वृद्धि को रोकने को प्रयास करवो चाहिए और परिवार समाज के स्तर पे इको रोकवे को प्रयास अपन को करने चाहिए।
1: बिल्कुल, अब एक ही लाने रोकवे के प्रयास के लाने अपन जो कर सकते हैं कि अपन जागरूक रहें और जो बाल बच्चों के ब्याह हैं सही उम्र में करें, जब वे आत्मनिर्भर हो जाएं तब अपन उनके शादियां करें और उनको भी शिक्षा देवे के कम बच्चा पैदा करें, कम जनसंख्या रखें जिससे समाज और परिवार की स्थिति अच्छी बने।
0: बिल्कुल भैया, और देखो कहत भी है कि छोटो परिवार
1: सुखी परिवार,
0: सुखी परिवार, ऐसी सोच रखें। बहुत तेज गति से बढ़त भई जनसंख्या दुनिया भर के लाने चिंता को विषय बनत जा रही है।
1: बिल्कुल बिन्ना,
0: और इसे निजात पावे के लाने लोगों में जागरूकता लावे के उद्देश्य से ही जो दिवस मनाओ जाते हैं। तो भैया विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पे हम सभी मिलके बढ़त भई जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों के प्रति समाज में जागरूकता लाके आवे वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देवे को संकल्प ले।
1: बिल्कुल बिन्ना, और ये चर्चा के बाद अब अपन सुनाते हैं जे कछु संदेश।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: रज्जू भैया, संदेशों के बाद अपन अपने किसान भैया बहनों को एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम किसान माड़ी में।
4: बिल्कुल बिन्ना, और देखो बस कारो चल रहा है, और जो समय होते कि अपन ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को रोपण करें, ज्यादा से ज्यादा पौधों को रोपण करें, जिससे अपना जो पर्यावरण है वो अच्छो समृद्ध और हरोभरो बने।
3: बिल्कुल भैया,
4: तो अपन आज थोड़ी सी जा भी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे ग्राफ्टेड पौधा है, बेलगात समय अपन का सावधानी रखें, जिसे वे अच्छी उनकी बढ़वार हो। हाँ। और वे पनप पाए। तो ग्राफ्टेड पौधों को दो भागों, एक तो रूट स्टॉक और सायन को जोड़ के तैयार करे जाते हैं। इनके सफल विकास के लाने इन्हें लगात समय कछु सावधानी रखबो जरूरी है। एक तो अपन स्वस्थ पौधा को चयन करें, केवल प्रमाणित जो नर्सरी है उसे स्वस्थ, रोगयुक्त, रोग मुक्त और अच्छी तरह से जुड़े भए ग्राफ्टेड पौधा लेवे। और ग्राफ्टिंग यूनियन यानी कि जो जोड़ को स्थान है वो अच्छी तरह से जुड़ो भाव और मजबूत भाव चाहिए।
3: इसके अलावा बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कैसे पौधा अपन को लेने हैं कि जो जोड़ को स्थान है वो अच्छो मजबूत रहो चाहिए।
4: अब दूसरी बात जात है बिन्ना के उपयुक्त समय पे अपन को रोपण करने हैं। वर्षा ऋतु की शुरुआत यानी के जून जुलाई में हो ही जाते हैं, तो या फिर जो सिंचाई की सुविधा हुई उपलब्ध, तो तब अपन ऐसे समय पौधा लगाएं जिसे पौधों को शुरुआत की जो अवस्था में नमी और अनुकूल वातावरण मिल सके।
3: बिल्कुल भैया।
4: तीसरी बात आते है गड्ढा की तैयारी अपन को सही ढंग से करना है। गड्ढा फसल के अनुसार पौधा के हिसाब से उचित आकार को आमतौर पर 45x45x45 सेंटीमीटर के हिसाब से, यानी के इतना लंबो, इतना लंबो, इतना चौड़ो, इतना गहरो, इस हिसाब से बनाएं। और ऊपरी उपजाऊ मिट्टी में अच्छी सड़ी गोबर की खाद कंपोस्ट मिला के अपन गड्ढा तैयार करें।
3: बिल्कुल भैया, माने जो नहीं है कि ऐसी जो अपने गोबर ऐसे ही मिल जावे और वो डाल देवे, ऐसे नहीं कहा कि फिर वो तो सड़ो हो नहीं रहते, तो ऐसे में पौधा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
4: बिल्कुल, जो ताजो गोबर रहता है। हाँ। उसमें गर्मी ज्यादा होते। हाँ। तो उसे पौधा की जड़ें खराब हो सकते हैं, तो अपन को ये बात को ख्याल रखना है। वो किसान भैया जानत भी है ये बारे में।
3: बिल्कुल।
4: अब रोपण की जो विधि है, पौधा को गड्ढा के बीच में सीधो रखें, ग्राफ्टिंग यूनियन यानी के जो जोड़ को स्थान है मिट्टी की सतह से ऊपर रेवे, और मिट्टी को हल्को दबा के पौधा को सहारा देवे और तुरंत सिंचाई करें। सिंचाई को अपन को विशेष ध्यान रखने है। अगर पानी नहीं गिर रहा है, रोपण के बाद नियमित सिंचाई करते रहें और मिट्टी को नम बनाए रखें, लेकिन जा भी अपन को ध्यान रखने हैं कि जल भराव ना हो पाए।
3: बिल्कुल भैया, तो बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने अपने किसान भैया हरों।
4: अगर अपन पूरी बात नहीं बता पाए, अपन थोड़े से रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहे, पहले सुनते हैं जो संदेश।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
1: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: तो शशि बिन्ना जी के पहले अपन चर्चा कर रहे थे ग्राफ्टेड पौधों की रोपण के बारे में, उनकी कैसे का
6: देख रेख
5: करने हैं। अब बात आते है सहारे की, तो सहारे यानी कि स्टेकिंग अपन को देने हैं पौधा को टेढ़ो होवे से बचावे के लाने बांस या लकड़ी को सहारो देवे और पौधा को मुलायम रस्सी से बांधे। इसके अलावा सुरक्षा भी जरूरी है पौधा की, पौधा को तेज धूप तेज हवा और पाला से बचाएं और जरूरत होवे पे शेड नेट या अन्य सुरक्षा को प्रबंध करें।
6: बिल्कुल भैया,
5: जो ग्राफ्टेड भाग है उसकी निगरानी करें, समय समय पे जांच करें कि जो ऊपरी भाग है सायन जिसको कहते हैं उसे नई कोंपलें निकल रही हैं कि नहीं। अगर रूट स्टॉक से अंकुर निकले तो उन्हें तुरंत हटा दीवे। तो ये सब बातें अपन को ध्यान रखने, खास तौर से सुरक्षा को।
6: बिल्कुल भैया,
5: तो भैया अरे पेड़ो तो लगा दे,
6: हाँ।
5: फोटो भी खिंचवा ली, मनो पता चली बाद में बुकरिया आई गई आई पौधा खा गई।
6: बिल्कुल भैया,
5: तो पौधा कहाँ से हुई है। तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है पौधा की, और संगे संगे अपन उमें पानी भी देवे। अगर जैसे पानी की कमी हो रही है पौधा की, पौधा के लाने, तो पानी के बिना बढ़े कैसे।
6: बिल्कुल भैया,
5: तो इन बातों को अपन को ध्यान रखना है, तभी ये ग्राफ्टेड पौधा है वे सही तरह से लग पे।
6: बिल्कुल भैया, और देखो आप कह रहे थे कि खूब ही पौधा लगाने हैं,
5: पौधों की संख्या बढ़ाने
6: हैं
5: और जनसंख्या नियंत्रित करने
6: हैं। तो अपन यही संबंध से बढ़िया सो एक लोकगीत सुनवा दे रहे हैं अपने किसान भैयारों को, आजाद सिंह यादव को गाओ भाव।
5: बिल्कुल।

0: तो देखो रज्जू भैया कितनो बढ़िया लोकगीत सुनो आजाद सिंह यादव को गाओ भाव।
1: और ये लोकगीत में भी संदेश हतो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में।
0: बिल्कुल भैया,
1: ओछो हतो पिछोरा फिर भी पाँव बाहर कड़ गए, तो जितो पिछोरा हो उतने पाँव अपन को पसानने हैं।
0: हाँ, पहले के लोग देखो जो कहा उतने बना गए हैं, बिल्कुल सांची सांची बना गए।
1: तो ये सब बातें अपन को ध्यान रखने हैं। और देखो बिन्ना, आज है शनिवार, तो आज अब बारी है आज के साप्ताहिक क्रम आकाशवाणी गांव में की।
0: हाँ, तो ग्राम फतेहपुर बंडा की स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जो कार्यक्रम है, तो सुना थे अपने किसान भैया हरे और हमारे रज्जू भैया ने उनसे बातचीत करी है।

0: आकाशवाणी गांव में आज एक कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं ग्राम बंडा के अंतर्गत आवे वाले गांव फतेहपुर में। तो इतने के एक किसान भैया अपने संगे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके खेती किसानी के अनुभव अपन जानते हैं। तो भैया का नाम आपको?
1: कुंवर सिंह ठाकुर, ग्राम फतेहपुर।
0: अच्छा, तो कुंवर सिंह भैया कितनी उम्र हो गई अपनी?
1: हमारी हो गई कोई 62-63 साल की।
0: अच्छा, तो किसानी से कब से जुड़े हो अपन?
1: किसानी से तो आप जुड़े ही हैं शुरू से, पिताजी हमें जुड़े हैं, पिता नहीं आए जब संचार में, जब ही से जुड़े।
0: तो भैया कितनी एकड़ जमीन है अपनी?
1: 7-8 एकड़ जगह जगह पे पूरी।
0: अच्छा अच्छा, तो मिट्टी कैसी है भैया?
1: काली मिट्टी है।
0: और सिंचाई के क्या साधन है?
1: सिंचाई के साधन कुआ है और नाला भी कड़ू है।
0: तो पर्याप्त पानी हो जाते है?
1: हाँ, पर्याप्त पानी।
0: तो भैया अबे अपन साल में कितनी फसलें ले लेते हो?
1: अब साल में अबे सोयाबीन बेचा हो, उड़दा भी बेचा है, कछु
0: बुआई हो गई?
1: हाँ, बोनी हो चुकी है। हाँ, और मूंगफली भी बेच देते हैं थोड़ी सी, मन पाते ऐसे थोड़ी सी बात है ना। ज्यादा फसल सोयाबीन की बात है।
0: बहुत अच्छी बात है भैया, तो खेती किसानी अच्छी हो रही है?
1: हाँ, अभी तो अच्छी हो रही है।
0: तो सोयाबीन भैया कौन सा बीज लगा दो अपन ने, कौन सी किस्म लगा दी?
1: वो अपन ने बेल्ट गुड कहा, वो भाव है 15-19।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तो एक ही का खासियत है भैया एक किस्म की?
1: अब इसकी अब है तो अच्छी है, कोई हो जाती है क्विंटल को मान ले 10-12 क्विंटल पड़े आउट है।
0: अच्छा।
1: और ज्यादा बच जाए तो और ओवर हो जाए, मैंने इसकी मैंने दे दी थे।
0: चलो बहुत अच्छी बात है भैया।
1: हाँ, और खाद मात और मिला देते थे ना, ओवर हो जाए सही सुरक्षित बच जाए तो।
0: तो भैया जो सोयाबीन बुआई की जो विधि है, मेड़ नाली पद्धति से बहुत थो भैया जैसी विशेषज्ञ बताऊ थे?
1: नहीं नहीं, ट्रैक्टर की मशीनों से बहुत है।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: नहीं लेकिन जो मेड़ नाली पद्धति होते है तो उसकी खासियत क्या होते भैया कि जैसे कम वर्षा हो जाए या ज्यादा वर्षा हो जाए तो दो ही स्थिति के लाने भैया

0: सोयाबीन की फसल में नुकसान नहीं हो पाता है?
1: हाँ, कम वर्षा हो अगर सोयाबीन में तो फिर गिर जाए तो और जाना बढ़ जाता फसल, पैदावार पीड़ो बढ़ जाता है बरसात में।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: बाद में पानी जाने पड़ा था उसमें।
0: अब जैसे देखो भैया, अपने इतने कम बारिश हो रही है, अब मानसून को इतो समय निकल गयो है, उसके बाद भी अब पर्याप्त तो वर्षा नहीं हो रही है जितनी होने चाहिए थी।
1: वर्षा भी तो सही हो रही है, पौधा भी सही जम चुको, पौधा भी बना लो, अभी दो चार आठ दिन खुलो भी रहे हमारे यहाँ पे, वर्षा हो चुकी।
0: तो भैया सोयाबीन की बुआई के पहले अपन ने बीज उपचार करो तो?
1: हाँ, बीज उपचार करो पूरे में मिला।
0: अच्छा, काय से करो तो भैया बीज उपचार?
1: वो सीसी आई तो वो हरी कर, कलर का मिला के यहाँ पर मशीन में डाल दो।
0: अच्छा, मतलब
1: मिला के रख लो, वो नहीं कर रही।
0: अच्छा, वैसे भैया सही तरीका जो है, जो विशेषज्ञ बताते हैं कि अपन को एफ आई आर क्रम के हिसाब से बीज उपचार करो चाहिए। पहले फफूंद नाशक से बीज उपचार करो अपन, फिर कीटनाशक से करो, फिर राइजोबियम कल्चर के द्वारा बीज उपचार करो, तो उससे भैया फसल अच्छी होता है, जो बीज जनित बीमारियां हैं वे नहीं लग पाऊ भैया।
1: हाँ, वो कल्चर अपन पहले ही मिला दी है। पहले मिला के रख लो, जैसे कल बोनी करने तो एक दिन पहले मिला के रख ली।
0: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, फिर इसके बाद में बोनी कर देते हैं।
0: तो खेती किसानी अच्छी हो रही है?
1: हाँ, अच्छी हो रही है, अभी तो अच्छी हो रही है, भांगे भगवान जाने।
0: और भैया सोयाबीन के संग और का लगाएं?
1: और उड़दा बाएं।
0: उड़दा बाएं हो?
1: आओ,
0: उड़दा की कौन सी किस्म लगाएं भैया?
1: उड़दा में तो अब उड़दा में कछु नहीं मिला, उड़दा में छिटकने बैठे थे।
0: चलो भैया, और उड़दा में खास तौर से जो पीला मोजेक बीमारी लगत है, वो की समस्या तो नहीं आज भैया?
1: हाँ, वो मैं तो फिर बाद में छिटकते हैं दवाई, उड़दा पीलिया रोग हो जाए।
0: हाँ हाँ हाँ भैया, जो खास तौर से जो पीला मोजेक रोग होता है, सफेद मक्खी के द्वारा फैलत है, वो के द्वारा विषाणु फैलाव जाते है, तो अगर अपन सफेद मक्खी को नियंत्रण कर ले हो,
1: अच्छी बात,
0: तो फसल में जब बीमारी ना लगे अपनी।
1: और
0: भैया जा बताओ के अबे बरसात में वृक्षारोपण को भी अच्छो समय होते, तो वृक्ष वगैरह लगाओ तो भैया अपन?
1: नहीं लगाओ तो वृक्ष बरसात में जरूर पेड़ लगा, पंचायत में भी मिल जाता जो पेड़ ये आम भी है और ये आम माम के भी के लगा दीजिए, भी लगा देते हैं दो चार दस मेड़ो मेड़ो पे।
0: बहुत अच्छी बात है भैया, आम है, आंवला है, अनार है, मुनगा है, कई प्रकार के फलदार वृक्ष अपन लगा सकते हैं, उनसे भैया अपन को फल तो मिलते ही है, संगे संगे खेती के लाने जो लकड़ी चाहिए अपन को वो भी मिल जाते हैं।
1: हाँ, नहीं नहीं लगा देते हैं पौधा, ग्राम सेवक पहले बता देते, पहले बैसाख में गड्ढा करवा देते। हाँ, फिर अब बरसात में लगा देते पौधा।
0: चलो बहुत अच्छी बात है भैया। और बताओ भैया, खेती में आपने और का नवाचार करे हैं?
1: और कछु मूंगफली भी बहुत है।
0: अच्छा, तो मूंगफली की कौन सी किस्म लगाऊ?
1: मूंगफली में कछु नहीं, वो तो जो किल्चर मिल्चर मिला के बैठे थे।
0: हाँ,
1: और जो सुपर खाद जा रहा था।
0: अच्छा अच्छा,
1: सुपर फायदा करा था।
0: बहुत अच्छी बात है भैया। अबे खाद की कछु दिक्कत तो नहीं आ रही?
1: अबे दिक्कत नहीं आ रही अभी, आज तो परे आप मका बार कितना दिक्कत जी, हमारे तो मका बहुत नहीं है।
0: कहा भैया मका का नहीं बहुत
1: हमारे तो क्षेत्र में? अब बहुत नहीं है, अब कहूँ।
0: हालांकि भैया पिछले साल मक्का के जो उत्पादक किसान भैया आते उनको कम दाम मिला तो, लेकिन भैया ये बार फिर से मक्का की तरफ किसान भैया आकर्षित हो रहे हैं। एथेनॉल उद्योग में भी जो काम में आ रहा है, तो मक्का की तरफ भी रुझान बढ़ो है किसानों को। तो मक्का भी लगाओ भैया, अच्छी नकदी फसल है,
1: उसमें मेहनत बहुत है मक्का में बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, मेहनत काय की भैया?
1: देखो पहला भाव उसको फिर फंटा दूरो धरी, पानी गिर गया तो धरी है, अगर हो गया भाव नहीं मिले तो मंडी में बिक नहीं रही है, जिसकी सड़क गए कछुआ नहीं हो गया।
0: या तो बात है भैया, देखो किसानी में तो भैया ऐसा है कि मेहनत तो लगी रहते, मेहनत कर भी से अपन को नहीं चूकने।
1: नहीं नहीं, पर इस साल किसान बहुत परेशान होगा आपको बता, हम तो झूठ तो बोला नहीं सच पर।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, तो बहुत अच्छो लग रहा हो भैया आपसे बात करके। और भैया आपके परिवार में को है?
1: अब हमारे परिवार में तो मुझके जन है किसान, मनो अभी से नहीं आए थे तो हम अकेले भंडारे बैठे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा भैया, जा बताओ सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के कल्याण के लाने, तो कौन कौन सी योजना को अपन ने फायदा लो है?
1: अब योजना सरकार की योजना में का है, जो खाते बीज मिलत है और का ग्राम सेवक देते हैं कछु बीज।
0: नहीं देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है ना?
1: अब किसान सम्मान निधि मिल रही है केंद्र सरकार की।
0: और प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाऊ तो भैया के नहीं?
1: हाँ, कछु कछु करें कछु नहीं करें, वो भी है बीमा।
0: हाँ,
1: तो फायदा हो।

0: को करें तो अब मिल जाते है।
1: और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ के नहीं?
0: किसान कार्ड है वो तो चल रहा है।
1: तो किसान क्रेडिट कार्ड से का सुविधा मिल जाता अपन को?
0: ब्याज कम दर से लग जाते है।
1: हाँ।
0: और अपना खेती में अपना काम चल जाते है, इससे फायदा है। अपनी जमीन पे पैसा हो मिल जाते है।
1: बिल्कुल भैया,
0: करवा दी फिर नहीं हो गुंजात अपने भर भी चाहे और का।
1: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ।
1: तो ये तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है भैया भारत सरकार की तरफ से।
0: हाँ।
1: इनको फायदा ले भैया और अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाओ।
0: हाँ, नहीं नहीं फायदा है, ऐसी बात नहीं है, सरकार को फायदा दे रही है।
1: चलो भैया, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और किसान भैया अपने संगे आए हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं भैया। भैया का नाम आपको?
2: हमारा नाम है राजेश।
1: अच्छा, तो राजेश भैया कहाँ है अपनी किसानी?
2: खजरा में।
1: तो कितने एकड़ जमीन है भैया?
2: 3 एकड़ जगह है सर जी।
1: तो खेती कब से कर रहे हैं अपन?
2: खेती कर रहे हैं से कम हम आई हो गई 55-56 साल की उम्र हो गई हमारी सर।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ।
1: तो बड़ो भैया लंबो अनुभव है आपको।
2: और का सर जी।
1: तो भैया जा बताओ के पहले जैसी खेती होती और अब जो वर्तमान में खेती हो रही है, क्या बदलाव आओ है भैया आपकी नजर में, बताओ
2: सर जी। अब जो बदलाव आ गया के जो खाद चल रहा है जो सरकारी, वो उसे हाथ से बाद जगह नहीं बची क्या पहले खाए।
1: हाँ।
2: अब तो जिस खाद अटका डालो सही फसल हो से सही।
1: बिल्कुल सही बात है भैया। तो गोबर की खाद नहीं डाल रहा था अपन?
2: गोबर की खाद डाल रहा था सर जी, मनोभा उस तो गोबर नहीं है अपने पास।
1: तो ओके लाना। तो भैया आपको पशुपालन से जुड़ने पर है।
2: हाँ।
1: बुआई वुआई हो गई?
2: हाँ बुआई तो हो गई सर जी।
1: मनो पानी नहीं गिर रहा भैया?
2: हाँ, पानी नहीं गिर रहा, पानी कम गिर रहा है।
1: तो सोयाबीन की कौन सी किस्म लगा रही?
2: सोयाबीन की बात तो 315 का है।
1: हाँ।
2: बिल्लो बिल्लो जमो है सर जी, जमो ही नहीं।
1: और बीज उपचार करो तो के नहीं भैया?
2: उपचार को अब वो नहीं रहा सर जी।
1: और भैया पानी की क्या सुविधा है अपने खेत में?
2: अब पानी को तो साहब हमारे से वो नदी के निकली है, पानी तो दे ली। मानो अब पानी ऊपर को छाने हैं।
1: सही कह रहे हो भैया।
2: हाँ।
1: उम्मीद करो भैया आगे जो समय आ है अच्छा पानी गिर है और फसलें अच्छी हुई है।
2: जी सर।
1: चलो भैया आपने हमसे बातचीत करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: धन्यवाद।
1: एक और भैया बुजुर्ग किसान अपने संगे हैं, उनसे भी बातचीत कर ली जाए। दादा का नाम आपको?
3: दामोदर नाम।
1: अच्छा, तो दादा कितनी उम्र हो गई अपनी?
3: 81 की हो गई।
1: 81 के हो गए। तो दादा जा बताओ के खेती किसानी में का बदलाव आओ है पहले से अबे तक?
3: बदलाव ये है हम लोग मूंगफली उठे जाते
1: हैं। हाँ।
3: साग सब्जी जगह उठे जाते।
1: अच्छा, तो साग सब्जी में तो खूब पानी चाहने पड़ा थे?
3: हाँ, पानी अभी बोर है।
1: तो पानी की क्या सुविधा है?
3: हाँ, पानी की परेशानी है, बोर है।
1: अच्छा, बोरिंग है?
3: हाँ, 4-5 बोर है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है भैया। तो अबे मौसम में खरीफ की बुआई हो गई है?
3: हाँ, मूंगफली लगी है 5 एकड़।
1: मूंगफली
3: 4 एकड़ जगह में उपजा लगी है।
1: अच्छा,
3: 2 एकड़ कलर लगो है, कलर महा, और 1 एकड़ की जगह में देसी गन्ना लगो।
1: गन्ना?
3: हाँ।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, आप वन वन की फसलें लगाए हो। तो जो भैया एक प्रकार से भी अच्छे होते हैं फसल विविधीकरण, कि अगर एक फसल में नुकसान होते है कोनो वजह से तो दूसरी फसल भैया फायदा दे के जाते हैं अपन को।
3: अबे हम जो खाद नहीं जाना थे खाद।
1: हाँ, खाद तो भैया देखो अपन जहाँ तक हो सके देशी खाद डालें भैया, गोबर की खाद,
3: गोबर
1: उससे भैया फसल अच्छी हुई है अपनी। और खेती किसानी में आपने कार नाव करो है?
3: और कुछ ना, अब वही है अपने पुराना ही चल रहा है, आलू है, सटना है, गुइया है।
1: हाँ
3: है, जो किसानी जो कछुआरी को काम है, राई है।
1: बेई भैया परंपरागत फसलें लगाऊ तो अपन ने
3: हम
1: चलो दादा आपने हमसे बातचीत करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी।
3: जयराम जी साहब।
1: तो किसान भैया बिन्ना हरो इते बंडा फतेहपुर आके इते के किसान भैयारों से उनकी खेती किसानी के अनुभव आज अपन ने आकाशवाणी गांव में के एक क्रम में जाने, और अब हो रहे है चलवे की बेरा। तो सभी जनों से हम ले रहे हैं आज्ञा, जय राम जी की।

0: तो देखो रज्जू भैया, आपने कितनी बढ़िया जानकारी ले ली किसानों से, बिल्कुल बारीकी से हर ही बात पूछ ली है कि कैसे का काम कर रहे हैं और कौन सी फसलें ले रहे हैं।
1: अब किसान थोड़े से चिंतित ऐसे हैं कि पानी कम बरस रहा है, उनकी उम्मीद के हिसाब से पानी नहीं गिर रहा है। तो अब देखो भैया, प्रकृति पे अपनो बस नहीं चलता।
0: बिल्कुल भैया,
1: कबे कितो पानी जाने है फसल की लाने, वो हिसाब से प्रकृति नहीं बरसा होता है। अपन को प्रकृति की संगे चलने पर है। अगर जैसे पानी की कमी हो रही है तो अपन निंदाई गुड़ाई को ख्याल रखें खेत में, संगे संगे जो कचरा खेत में हो रहा है वो को प्रबंधन करें, खाद को प्रबंधन करें और ऐसी फसलें अपन लगाएं, ऐसी योजना बनाएं कि कम पानी वाली फसलें, कम पानी वाली जो किस्में हैं उनको अपने खेतों में जगह देवे तो निश्चित तौर पे अपनी खेती अच्छी हुई है।
0: बिल्कुल भैया, और देखो जैसे समय समय पे अपने कृषि विशेषज्ञ भी बताते रहते हैं कि खेतों में डबरा डबरी सोई बना लेते हैं अपने किसान भैया हरे, तो जो बरसात को पानी है तो उनमें इकट्ठो हो जाते हैं, तो वो पानी से फसलों की सिंचाई हो जाती है।
1: बिल्कुल,
0: और जो भी पानी के बचाव के संसाधन है वे भी अपना उतरव चाहिए, मेड़ों पे बढ़िया अच्छे पेड़ लगा देवे है ना, तो सभी पानी रुकत है। तो जे सभी उपाय अपना लेवे तो ज्यादा अच्छे रहते हैं। और अब अपन सुनवा रहे हैं अपने किसान भैया हरों को बढ़िया सुशहरू रामचरण यादव को गाँव भाऊ।

0: तो रज्जू भैया, अपन सुन रहे थे रामचरण यादव को गांव भाव लोकगीत, और अब बिरिया हो गई है आज के मंडी के भाव की। तो गेहूं रहो है 2250 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5000 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल, बटरी 2700 से 3400 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 5000 से 9400 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5000 से 7200 रुपये प्रति क्विंटल और सोयाबीन 5500 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल।
1: और आज के मौसम की जानकारी भी अपन दे चलें। आज को अधिकतम तापमान रहो 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रहो 26 डिग्री सेल्सियस, सवेरे की आर्द्रता 75% दर्ज करी गई और संजा बिरिया की 62%, हवा की गति रही 16 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा रही पश्चिमी। और इन्हीं सूचनाओं के संग आज के किसान वाणी कार्यक्रम को समय पूरा हो रहा है, तो सभी किसान भैयारों से अपन लेते हैं आज्ञा। जय राम जी की।
0: जय राम जी की।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं, समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो आइए, कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बरसात से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

श्रोताओं, अभी आपने बरसात फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थीं कुमार सानू और अलका याग्निक की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ में गुरु फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत है ए आर रहमान का।

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें
1: जंगल से।
2: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत, और आइए श्रोताओं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं चमेली फिल्म से। आवाज है सुनिधि चौहान की, गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

चमेली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सलमा आगा के गाई इस गजल से। कलाम है गौहर कानपुरी का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सलमा आगा की आवाज़ में गौहर कानपुरी का कलाम सुना। आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं संगीत सरिता, और आइए कार्यक्रम की आखिरी गज़ल आपको सुनवा रहे हैं। आवाज़ है चंदन दास की।
1: जनाब इब्राहिम अश की गज़ल मुलाजा फरमाइए।

0: चंदन दास की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब समाप्त होता है।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: मैं सागर हूँ। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। विश्व जनसंख्या दिवस पर ये विशेष भेंटवार्ता है। विषय है भ्रांतियों को दूर भगाएं, परिवार नियोजन अपनाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति चौहान वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ से बातचीत कर रही हैं। जय शिखर, आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
3: नमस्कार श्रोताओं, परिवार नियोजन परिवार कल्याण। अगर हमारा परिवार सुरक्षित है, परिवार सीमित है और परिवार को हम सुरक्षित रख पाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने को हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति चौहान जी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें सबसे पहले ये बताएं कि परिवार नियोजन क्या है।
4: परिवार नियोजन उसी प्रकार का कहने चाहिए एक मैनेजमेंट है जो हम जैसे अपने वर्क प्लेस को मैनेज करते हैं, इसी प्रकार से हम अपने परिवार को यदि सीमित रखेंगे तो सीमित साधनों में भी हम बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। इसी को मेरे हिसाब से परिवार नियोजन कहा जाना चाहिए।
3: जी अच्छा डॉक्टर साहब, परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सरकार और जो शोधकर्ता हैं वो भी लगातार लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसी अफवाहें लोगों में आ जाती हैं, कुछ दिमाग में भ्रांतियां आ जाती हैं कि वो उनसे दूर जाने लगते हैं, जबकि वो पूरे शोध के बाद, कई वर्षों के शोध के बाद ही यहां तक उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, जैसे कि नसबंदी करने से हमेशा पुरुष दूर भागते हैं जबकि वो उनके लिए सरल है।
4: उनको लगता है कि नसबंदी करने के बाद वो साइकिल नहीं चला पाएंगे, हाँ। खेत में काम नहीं कर पाएंगे और शायद उनका पौरुष कम हो जाएगा, उनका जो पुरुषत्व है उसमें भी कोई अंतर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है इसमें केवल हम एक नस रहती है जिसको हम बांधते हैं और काटते हैं, सिर्फ वही स्पर्म्स को लाने ले जाने का काम जो करती है उसी को सिर्फ हम लोग हैंडल करते हैं, उसके अलावा कुछ भी हैंडल नहीं करते हैं। और ये ऑपरेशन होता है शरीर के बाहर, यानी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जबकि महिला का जो ऑपरेशन होता है वो पूरा का पूरा पेट के अंदर, यदि हम दूरबीन का भी प्रयोग हाँ। करते हैं तो पूरा पेट के अंदर जाती है, पेरिटोनियम के अंदर जाती है, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन ये सब आएंगे, तो इन सब में इन्फेक्शन फैल सकता है यदि जरा सी भी त्रुटि हुई तो।
3: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सारे जो संसाधन है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई आदमी कमी निकाल लेता है। जैसे कि भी नसबंदी की बात हुई तो लोगों को डर लगता है कि उनका पुरुषत्व कम हो जाएगा, उनके साथ कोई अनहोनी ऐसी समस्या आ जाएगी कि वो परिवार को आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि दोबारा भी खोली जा सकती है नसबंदी।
4: बिल्कुल खोली जा सकती है, और पुरुष की नसबंदी खोलना तो और भी आसान है।
3: जी अब बात आती है मैम कंडोम के ऊपर, तो कंडोम के ऊपर भी फिर लोग झिझकते हैं, फिर कहीं कहेंगे कि ये एहसास फीलिंग्स कम होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो कंडोम्स के लिए तो कम से कम ये कह सकते हैं कि अगर आपको HIV है या आप कोई बीमार हैं तो उनसे भी बचाव कर सकते हैं, तो कंडोम के बारे में क्या कहना है।
4: बिल्कुल, कंडोम तो आजकल बहुत ही ज्यादा हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि इससे दो लाभ मिलते हैं, एक तो प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट होती है, दूसरा STD और HIV या एड्स का इन्फेक्शन भी फैलने से रुकता है। तो पार्टनर को अगर प्रोटेक्ट करना है तो कॉन्डोम को यूज करना तो बहुत आवश्यक है, यद्यपि आपका ऑपरेशन हो चुका हो तो भी, और यदि दोनों पार्टनर्स HIV पॉजिटिव हों तो भी उनको कॉन्डोम जरूर यूज करना चाहिए, ताकि उनका जीवन का लंबा हो जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहे। जैसे कि आपने कहा कि इसमें कोई भी फीलिंग्स कम हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फीलिंग्स बराबर रहती है। इतना थिन लैटेक्स यूज किया जाता है कि उसे कोई भी अंतर नहीं आता, बस सही प्रकार से यदि प्रयोग किया जाए तो इसका फेलियर रेट भी बहुत कम होता है, पर कई बार लोग सही प्रकार से उपयोग में नहीं लेते, इसके कारण थोड़ा सा फेलियर रेट इसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओरल पिल्स, गोली। गोलियां या कॉपर्टी या अंतरा इंजेक्शन या ऑपरेशन।
3: अब मैं आते हैं खाने की गोलियां
4: जी,
3: इसमें महिलाओं को सबसे बड़ी शिकायत है। आज हम लोग शिकायत ही दूर करने बैठे हुए हैं। महिलाओं को सबसे बड़ी शिकायत हो जाती है कि इसको खाने से बांझपन आ जाएगा, इसको खाने से जीवन भर दर्द हो जाएगा, इसको खाने से सिर दर्द होता है, और भी बहुत सारी गलत फहमियां वो लेकर बैठी हुई होती हैं, और फिर अनचाहा गर्भ ठहर जाता है और आगे जाके बहुत सारी परेशानियां होती हैं।
4: जी, गोलियों में भी दो प्रकार की गोलियां होती हैं। एक गोली रहती है जिसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं।
3: जी,
4: बाय द वे, किसी के हस्बैंड कहीं और रहते हैं, दूर रहते हैं, सेलर हैं, ड्राइवर हैं, और सडनली आ गए, तो अब आप पूरे महीने आपने गोली नहीं खाई थी और उनका आना भी सुनिश्चित नहीं था, लेकिन छुट्टी मिल गई और वो आ गए, तो ऐसे में अगर आपका संपर्क होता है पति से तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा सकती हैं। 72 नाम से आती है,
3: 72 घंटे
4: के अंदर अंदर ये काम करती है। सबसे अच्छा काम ये करती है 24 घंटे के अंदर।
3: अच्छा, अच्छा।
4: तो एक ये पिल है जिसके बारे में लोगों को कम पता है। दूसरा, अगर की विक्टिम आती है हमारे पास या कोई ऐसी सेक्सुअल अब्यूज वाली आती है तो हम उसको एग्जामिन तो करते ही करते हैं, साथ में उसको हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी देते हैं, क्योंकि भगवान न करे उसके साथ किस प्रकार की परेशानी प्रेगनेंसी वाली आगे जाके हो। ये तो एक पिल हो गई। दूसरी जो पिल्स रहती हैं वो पूरी साइक्लिकल रहती हैं, तो 21 दिन का पूरा कोर्स रहता है, और ऐसी भी पिल्स बनी है जो हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग चलती हैं। पहले 10 दिन में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा जितनी होनी चाहिए वैसी, फिर अगले 10 दिन में क्या होना चाहिए उस प्रकार से उसमें प्रपोर्शंस बनते हैं, फिर अगले 10 दिन में, यानी पूरे महीने का जो नॉर्मल पैटर्न होता है हार्मोन्स का, उसके अकॉर्डिंग उसमें बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी के हार्मोन्स रखे जाते हैं, तो बिल्कुल नियर नॉर्मल फील आता है, कभी पता भी नहीं चलता कि आप गोलियां खा रहे हैं, और इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है, 0.1%
3: गोलियों का।
4: तो यदि महिला गोलियों का सेवन करती है और जब वो गोलियां खाना बंद करती है तो इमीडिएटली उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में वो कंसीव कर सकती है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर उसने एक बार गोलियां खा ली तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी, वो जब चाहे तब गोलियां बंद करे और कंसीव कर सकती है। मोटापे के बारे में बहुत लोगों का विचार ऐसा रहता है कि जब से हमने गोली खाई तब से हम मोटे हो गए, जब से हमने गोली खाई तब से हम थोड़े निश्चिंत हो गए और खाना पीना हमने बहुत जोरदार तरीके से शुरू कर दिया, इस बारे हमारा वजन बढ़ता है, इस बारे नहीं बढ़ता कि गोली ने बढ़ा दिया।
3: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: दूसरा, कैंसर का डर बहुत लोगों को लगा रहता है कि गोली खाने से कैंसर हो जाता है। कैंसर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कैंसर जिन चीजों से होता है वो गोली में होते ही नहीं
3: है। अंतरा इंजेक्शन
4: बच्चों में अंतर रखने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, और 3 माह में एक बार एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो बहुत ही आरामदायक है, यानी रोज रोज गोली खाने का भूल जाने का चक्कर नहीं। कॉन्डोम अगर पति नहीं यूज कर रहे तो वो भी टेंशन नहीं। ऑपरेशन नहीं कराने का मैंने कोई बात नहीं, हम टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव से भी काम चला सकते हैं। तो ये अगर 3 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है तो इसका असर बहुत अच्छा रहता है। हाँ, इसमें एक बात हमें जरूर कहना पड़ेगी कि अगर हमें बच्चे चाहिए हैं तो कम से कम 6 महीने पहले हमें अंतरा इंजेक्शन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका असर 3 महीने से लेकर 4-5-6 माह तक भी चल सकता है।
3: महिलाओं के लिए कोई कॉन्डम्स?
4: हाँ, फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, लेकिन वो सरकारी तंत्र में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनका इतना उपयोग नहीं है, पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में महिलाएं फीमेल कॉन्डम्स का भी इस्तेमाल बहुत रेगुलर वे में कर रही हैं।
3: जी, उसके

0: पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है,
1: उसमें डिपेंड नहीं रहना पड़ता।
0: जी जी,
1: उसमें भी एसटीडी और एचआईवी से प्रोटेक्शन है।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी जो रिसर्च जो अभी चल रही हो परिवार नियोजन के लिए कि आपको लगता है इनमें से कि हम आगे आने वाले समय में ये आगे बहुत यूज किया जाएगा, लोगों में पॉपुलर होगा, लोगों में बहुत ही ज्यादा कारगर होगा?
1: अभी रिसर्च चल रही मेल पिल के ऊपर। अच्छा, जैसे अच्छा। फीमेल पिल होती है, इस तरीके से मेल पिल पर भी काम चल रहा है। अगर वो हो गया तो फिर बराबर बराबर की जवाबदारी दोनों लोग ले सकते हैं। अभी ये होता है कि प्रेगनेंसी क्योंकि महिला को होती है तो तुम जानो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो बेचारी वही सबको झेलती रहती है। अगर मेल का इसमें पार्टिसिपेशन हो जाए, क्योंकि एक्चुअली बराबर बराबर का है बच्चे पैदा करने में, तो बेहतर होगा। तो मैं तो एक गुजारिश ये भी करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि पुरुषों का सहयोग इसमें बहुत होना चाहिए और परिवार की काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, क्योंकि महिला तो दो बच्चों पे खुश हो जाती है कि चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो। हाँ। बहुत अच्छा, जो भगवान ने दिया वो प्रसाद मिला है हमें, और हम इन्हें अच्छे से पालेंगे, बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। अरे एक मौड़ा तो होने चाहिए, तो एक मौड़ा तो होने चाहिए कि चक्कर में 6-7 लड़कियों की लाइन हो जाती है, फिर लड़कियों की निगरानी पूरे टाइम, लड़कियों का उठना बैठना हर चीज पे निगाह रखनी, फिर शादियां, कितना भी दहेज विरोधी नियम बन जाएं और महिलाएं कई प्रकार से यौन उत्पीड़न का भी
0: शिकार
1: हो जाती हैं, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, तो जी। वो एक एडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी कपल की हो जाती है।
0: जी जी, परिवार नियोजन ना सिर्फ हमारे देश के लिए जरूरी है बल्कि हमारे परिवार के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने परिवार की चिंता करता है।
1: शायद देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देश के साधन भी सीमित हैं। पता चला कि ऑयल की क्राइसिस आ रही है, गैस की क्राइसिस आ रही है। अगर 20 लोग के लिए खाना बनेगा तो ज्यादा गैस खर्च होगी, ज्यादा आना जाना पड़ेगा। जी, जी। और दो लोग रहेंगे तो आराम से।
0: अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये तो हुई गलतफहमियां जो आपने बड़े बखूबी दूर की, अब हम आ जाते हैं उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि एक एक चीज के कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं, जो मामूली से होते हैं कि मान लीजिए कोई टैबलेट खाई तो हल्का सा सिर दर्द हो जाए।
1: हाँ, मामूली से साइड इफेक्ट्स होते हैं। कॉपर टी की हमने चर्चा नहीं की।
0: हाँ,
1: वो भी पॉपुलर साधन है, मगर शुरू में क्योंकि लूप से शुरुआत हुई थी और लूप बहुत ही कहना चाहिए कारगर साधन नहीं था।
0: हाँ,
1: और उसके साथ बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन थे, तो लोग ये सोचते हैं कि कॉपर्टी के साथ भी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन है, जबकि कॉपर्टी और अच्छी, जैसे आपने कहे ना नियोर मेथड्स में, तो अब सिल्वर वाली आ गई है कॉपर्टी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो जो सिल्वर जिसमें एडिड रहता है वो 10 साल के लिए इफेक्टिव है। तो मान लीजिए आपने 25 साल में कॉपर्टी लगवाई और 10 साल बाद जब आप 35 साल की हुई तो आपने कॉपर्टी चेंज करवा ली।
0: अच्छा, वो चेंज भी हो जाती है?
1: चेंज हो जाती है, वो हटा देंगे और दूसरी लगा देंगे। ये आउटडोर प्रोसीजर है, मतलब 2 मिनट का प्रोसीजर। हाँ। कुछ भी नहीं करना, इसमें भर्ती भी नहीं होना। तो दूसरी कॉपर्टी आपने लगाई, फिर आप 45 साल की हो गई, माने 2 कॉपर्टी में आपका पूरा फर्टाइल पीरियड ही कवर हो गया।
0: जी, क्या
1: यानी आपको ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ा और ये हो गया। मगर एक छोटा सा साइड इफेक्ट इसमें होता है, वो ये होता है कि शुरुआत में जब कॉपर्टी अपनी जगह बनाती है तो थोड़ी बहुत इरेगुलर स्पॉटिंग हो सकती है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: कभी कभी हल्के दाग दिखाई दे सकते हैं, कभी कभी इरेगुलर ब्लीडिंग हो
0: सकती है।
1: बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ये शुरुआती लक्षण होते हैं और एक बार जब कॉपर्टी सेटल हो जाती है 1-2 महीने के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स गायब हो जाती
0: है। पीरियड्स में भी कुछ अंतर आ जाता होगा?
1: पीरियड्स में कभी कभी पीरियड का फ्लो इनिशियल फेज में ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग डॉक्टर के पास चले जाए, पेशेंट अगर हमारे पास आ जाती है तो हम उसको कंट्रोल करने का भी साधन हमारे पास होते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं इनिशियल स्टेजेस में और बाद में तो वो अपने आप ही कंट्रोल रहता है।
0: कॉपर्टी का नाम भी टी आकार के होने की वजह से,
1: टी आकार की होने की वजह से।
0: लेकिन ये लूप का क्या है, थोड़ा सा लूप समझाइए।
1: लूप तो डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन लूप एस के शेप में हुआ करता था एक वायर, और क्योंकि वो वायर पॉइंटेड होता था वो कहीं भी जाता था, मगर कॉपर्टी कहीं भी नहीं जाती,
0: वो फिक्स।
1: हालांकि दिमाग में अभी भी लोगों के वही घुसे कि कॉपर्टी मूड में चढ़ गई, मूड पिरान लगो, है ना, सिर दर्द होता है उसको, सिर दर्द उसको कोई और टेंशन से होता है, वो सोचते कि कॉपर्टी लगवाया इसके कारण सिर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसने गंदा पानी पी लिया, सड़क पे जाके उसने गोलगप्पे खा लिए, उससे उसका पेट खराब हुआ, अब वो सोचते कि मैंने तो कॉपर्टी लगवाई है इसके कारण मेरा पेट दर्द हो रहा है।
0: सही
1: कहा
0: आपने,
1: ये एक प्रॉब्लम।
0: अच्छा, कॉपर्टी को लगवाने का खर्च कितना आता है, क्या सरकारी हॉस्पिटल में ये फ्री लगाई जाती है?
1: निःशुल्क।
0: और कितने दिन में वो महिला काम पे जा सकती है?
1: महिला तुरंत काम पे जा सकती है, इट इज लाइक अ लंच टाइम प्रोसीजर।
0: अच्छा।
1: वो काम करते करते आए अपने लंच के टाइम में कॉपर्टी लगवाए वापस ही काम पे चले जाए, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेनी है उसको। ये तो बहुत ही एक कहना चाहिए बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, शॉर्ट

0: प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना। अगर सरकारी तंत्र में जाती है तो उसे कुछ भी खर्चा नहीं आता, लेकिन अगर प्राइवेट में जाती है तो कॉपर्टी अलग अलग प्रकार की होती है। एक प्रकार की कॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिन लोगों को हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो वो एक मिरेना नाम से कॉपर्टी आती है, उसमें से 50 माइक्रोग्राम्स पर डे के हिसाब से प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है। तो वो क्या करता
1: हार्मोन
0: है,
1: होता है,
0: हार्मोन रहता है, वो हार्मोन एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है।
1: क्या बात है,
0: एक्सेसिव ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाती, प्रेगनेंसी भी नहीं होती। और ये वाली कॉपर्टी लेकिन सरकारी तंत्र में अभी आई नहीं है, और ये वाली कॉपर्टी का कॉस्ट अराउंड 7,000 to 8,000 होता है।
1: अच्छा, ये भी होती है,
0: तो ये इसलिए गवर्नमेंट सेटअप में तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेटअप में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इफेक्टिव भी है।
1: अब मैम बात करते हैं फिर से नसबंदी, अगर एक व्यक्ति करवाता है तो क्या वो वजन भी उठा सकता है, पौरुष शक्ति में कोई कमी भी नहीं आती है, अब वो काम पर कितने दिनों में जा सकता है?
0: वैसे तो वो काम पे उसी दिन भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन लोगों के मन में ये शंका रहती है कि हमारा तो ऑपरेशन हुआ है तो अब हम आराम करें, तो हम गवर्नमेंट ने भी एक प्रोसीजर दिया है 7 days की छुट्टी का। तो अगर
1: मनोवैज्ञानिक रूप से उसको
0: मनोवैज्ञानिक रूप से सेटल हो जाए और उसको खुद को ठीक लगने लगेगा शांति में, डेफिनेटली फिर वो खुद ही देख लेगा कि वो सब चीज कर पा रहा है, वजन भी उठा पा रहा है और साइकिल भी चला पा रहा है, खेत में भी काम कर पा रहा है, जा सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11th July को, और इस उपलक्ष में हमने ये रिकॉर्डिंग स्पेशली की है ताकि ये मैसेज सब दूर पहुंच जाए कि पुरुषों का भी दायित्व होना चाहिए परिवार नियोजन में, और ये जो जितने भी भ्रांतियां हैं परिवार कल्याण वाले नियोजन के जितने भी संसाधन है उनमें, वो भ्रांतियां लोगों के दिमाग से हट जाए। अगर कोई भ्रांति हो तो कभी भी अस्पताल में आ जाए, किसी भी लेडी डॉक्टर के पास पहुंच जाए, सारी भ्रांतियां और उसके मन में जितनी भी शंकाएं होंगी वो हम लोग क्लियर कर देंगे और फिर वो यूज कर पाएगी इजिली अच्छी तरीके से।
1: तो श्रोताओं जाना आपने कि जो संसाधन सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं उनके कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस जरूरत है कि आप उनको जानें, उनको समझें और उनका इस्तेमाल करें। निश्चिंत रहेंगे आप, आपका परिवार खुशहाल होगा, आप भी खुश रहेंगे और हमारा देश भी खुश रहेगा। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे स्टूडियो आई और परिवार नियोजन पर इतने अच्छे तरीके से आपने जो भी गलतफहमियां थीं उनको दूर किया और अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विश्व जनसंख्या दिवस पर भेंटवार्ता, डॉक्टर ज्योति चौहान वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ से बातचीत कर रहे थे। जय शिखर। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का अनुप्रसारण अब हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दो जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436907930849155237141 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
5: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को

0: एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजे हैं। श्रोताओं, समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत का। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ग्राम लोहेड़ी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश हमें मिली है। जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रीनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक की। लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश है। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल की। बाबा कुटीर, रायगढ़ से लिखने वाले हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। शाहू नगर, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल मनवर और बेबी प्रियांशी की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बंडा बेलई से ये पत्र है। लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी, अनरत रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार का ये पत्र हम तक पहुंचा है। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत अदालत फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है गुलशन बाबरा ने और संगीत दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने।

0: हर रविवार सुबह 9 बजे सुनिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बातें
1: जंगल से।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर और अनुपमा देशपांडे का गाया हुआ। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है शिव हरि का, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म चांदनी से। सुनने के लिए अनुरोध लिख भेजा है छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से। ये व्हाट्सएप फरमाइश मिली है नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद की। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की फरमाइश हमें मिली है। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन और बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का नाम भी इसमें शामिल है। ग्राम पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर की व्हाट्सएप फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं चांदनी फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी के सागर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अगला फरमाइशी गीत है फिल्म दामिनी से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम भुइनापार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, कुमारी योगिता, कुमारी गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई साहू और त्रियांश कुमार साहू ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू की। पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से लिखने वाले हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी की। गायत्री कॉलोनी रहली से ये व्हाट्सएप फरमाइश आई है हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल किशोर नामदेव, राघवेंद्र सोनी, नरेंद्र सोनी, जीतू नामदेव, छोटू नामदेव, उमा सराफ और राम जैन की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं दामिनी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत की ये आखिरी फरमाइश हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर। धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से ये व्हाट्सएप फरमाइश मिली है श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे की। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और कुमकुम सुरलकर की व्हाट्सएप फरमाइश मिली है। शास्त्री नगर वीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साइरा सपकाल और विशाल सपकाल की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। कवर कॉलोनी बड़वाह से ये पत्र है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली का ये पत्र है। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत की आखिरी फरमाइश, शान फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं आरडी बर्मन, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

आर डी बर्मन, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। इन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

0: नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज के फनकार में आज एक ऐसी फनकार जिन्होंने अपनी गायकी से सबके दिलों को लुभाया।
1: अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का।
0: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों, थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा, तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

टुन टुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा, और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नख्मात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। जज्बातों में कहीं आग सी लगी हो जैसे, एक नदी झूम के सहरा में बही हो जैसे, कानों में आपने कुछ मेरे कहा लगता है, सीने में झनकार सी उठी हो जैसे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर, हर गली लगता है अब तेरी गली हो जैसे। अपने आगोश में हमको यूं छुपा लीजिए, जिंदगी आपके पैकर में ढली हो जैसे।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में, तेरे परचम सारे तेरे दर पे ही रहूं, है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं, देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारे।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और सवारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूब कर निकलना है और वहाँ से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह खिल उठना है, नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत दिखा।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहाँ उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदें जमी पर गिर के समा जाती हैं उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़प ये दिन रात की कसम।

कई कई बार लिखा, पानी पर लिखा, नदी पर लिखा, नदी में चलती नाव पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में जो फायदे से भर देता है, मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दीवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती खजाने

रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के जज्बात, उसी तरह

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

हमको अगर इस हाल में पहचानते तो हम आपकी बाकी नजर को मानते। मेरा फसाना पता या ठिकाना अगर पूछते।

0: ये था। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य धारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को